0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: तो चलिए इस टाइम मैं और कोई खबर नहीं देती, लेकिन आपसे बोलती हूँ दैट द लायन सिटी चैलेंज हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं इस टाइम पर आपका द लायन सिटी चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो रेडियो मस्ती 24/7। दिस इज रेणुका विद यू एंड राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द लायन सिटी चैलेंज। हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं आपसे कि भाई एक इस तरह का एक गेम है जहां पर बहुत ही मजे आने वाले हैं। जी हाँ, हम आपके साथ में गेम्स नहीं खेलते, लेकिन एक ये वाली गेम खेलने का बहुत मन कर रहा है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, वेल ऑल यू गॉट टू डू इज सेंड अस LION लायन लिख के भेज दीजिए हमें व्हाट्सएप पे। जी हाँ, दैट इज 9151-8963। हमारा रेडियो मस्ती 24/7 का जो ऐप है उसके टॉप कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में व्हाट्सएप का सिंबल है, बस वहां पर दबाइए बटन और हमें भेज दीजिए ये मैसेज कॉल्ड लायन। जैसे आप ये भेजेंगे हम आपको दो सवाल भेजेंगे। जी हाँ बिल्कुल, उनका जवाब आपको देना जरूरी है बिकॉज दैट इज द एंट्री पॉइंट। बड़े आसान से सवाल है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में आपका हम ईमेल आईडी मांगेंगे अगर आपने ये सही जवाब दिए, एंड देन यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ द शो। जी हाँ, द लायन सिटी चैलेंज जो कि एक बहुत ही बढ़िया सा क्विज शो होने वाला है जो कि हम कंडक्ट करेंगे अपने स्टूडियो पर। रिकॉर्डिंग होगी, कैमराज होंगे, लाइट्स एक्शन, और उसमें बहुत मजे आने वाले। एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू विन। ऑलराइट, बिकॉज यू आर गोइंग टू विन, इट इज टाइम फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। जी हाँ, यू कैन विन कैश, यू कैन विन प्राइजेस, यू कैन विन एनीथिंग। क्या पता आपकी किस्मत में क्या आ जाए। और इसीलिए रफ्ता रफ्ता फटाफट लाइन लिख के भेज दो एंड बी अ पार्ट बिफोर हमारी पोजिशन सारी खत्म हो जाए और फिर हम बोले सॉरी, नेक्स्ट सीजन में आना। गुड मॉर्निंग।
3: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: वेलकम बैक। कभी कभी हम दुनिया में सोचते हैं दैट होपफुली थिंग्स विल गेट ईजियर, बेटर एंड दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस, लेकिन फिर हम इस तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं और हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24 ऑन द मॉर्निंग शो। दिस इज रेणुका विद यू एंड टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द स्टेटमेंट दैट नॉर्थ कोरिया मेड जस्ट यस्टरडे। जी, नॉर्थ कोरिया ने कल ही के दिन में ये कहा कि उनका जो स्टेटस है एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वाज इररिवर्सिबल एंड इट इज की टू इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी। रिजेक्ट किए गए सारे के सारे कॉल्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज फॉर डी न्यूक्लियराइजेशन। प्योंगयांग ने हमेशा से इंसिस्ट किया है कि वो अबैंडन नहीं करेंगे अपना न्यूक्लियर आर्सेनल एंड साथ ही में ये भी कहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, जो हमारे सारे के सारे प्लान्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, वो बिल्कुल भी रोके नहीं जाएंगे। तो हाल ही में ये स्टेटमेंट दोबारा से आई आफ्टर अ ट्राइलैटरल मीटिंग बिटवीन साउथ कोरिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन टोक्यो। जी हाँ, जो हुई इसी वीकेंड पर, एट विच द एलाइज रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू द कम्प्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन of the Korean Peninsula. US और उसकी जो वैसल फोर्सेस हैं, मीनिंगलेस रिटोरिक अगेंस्ट द DPRK कैन नेवर अफेक्ट द इररिवर्सिबल पोजिशन ऑफ द DPRK एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये कहा गया इन अ स्टेटमेंट पब्लिश्ड बाय द ऑफिशियल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी कल ही के दिन में, यूजिंग द एक्रोनिम फॉर द नॉर्थ्स ऑफिशियल नेम। The new denuclearization is an irreversibly finalized matter. इस तरह का की स्टेटमेंट भी आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस बात के लिए। वेल, स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि वॉशिंगटन का सेल्स ऑफ वेपन सिस्टम्स टू सोल एंड टोक्यो इज जस्टिफाइड, क्योंकि प्योंगयांग जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हट रहा है, एंड देयरफॉर अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटी फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक आदमी नहीं मानेगा तो बाकी देश भी तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सोचने की बात यह है कि इस दुनिया में हर कोने में आज के दिन में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड द वर्ल्ड हैज बिकम सच अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी। राइट, ऑन रेडियो मस्ती लेट्स टेक अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक, कमिंग बैक विद सम बॉलीवुड न्यूज दिस टाइम। गुड मॉर्निंग
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: और जहाँ कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं वापस आऊंगा, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के बीच में ही टंगा हुआ है, वहीं पर 10 दिनों में पेडी, जी हाँ, द मच टॉक्ड अबाउट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म हैज क्रॉस्ड सेवरल बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन्स, इंक्लूडिंग एंटरिंग द 350 करोड़ रुपीज क्लब वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, बिल्कुल कमाए चले जा रहा है, कमाए चले जा रहा है, यही है अगली खबर हमारी।
1: Serious headlines with a not so serious vibe only on the morning show on Radio Masti 24/7.
0: जी बिल्कुल, Radio Masti पर। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी about the box office earnings of the latest Hindi film, लेकिन इस समय कल के दिन तक पेडी ने कमाए थे सिर्फ और सिर्फ कल ही के दिन में 4.5 करोड़ इन द नेट डोमेस्टिक कलेक्शन। जी हाँ, और साथ ही साथ में इस समय डोमेस्टिक अर्निंग है 200 करोड़ से कहीं ज्यादा। इट्स नाउ द 9th फास्टेस्ट तेलुगु मूवी टू क्रॉस 200 करोड़ मार्क, बीटिंग द 16-day रिकॉर्ड ऑफ पुष्पा द राइज। RRR और पुष्पा 2, जैसे कि आप जानते हैं, दो ही दिनों में, जी हाँ, वायल साही, आदि पुरुष, सलार, सीज फायर पार्ट 1, कल्कि 2898, इन्होंने 3 दिन में ये काम किया था, लेकिन दो ही दिनों में इन्होंने क्रॉस कर लिया था 200 करोड़ मार्क। वेल राइट नाउ 240 करोड़ पर अटकी है जी ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन ऑफ पेडी, एंड साथ ही साथ में बस 250 पहुंचने में 10 करोड़ की कमी। जून 13th को ही, जी हाँ, प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस किया था दैट द स्पोर्ट्स ड्रामा डायरेक्टेड बाय बुची बाबू साना कलेक्टेड 366 करोड़ इन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। कहाँ चली जा रही है सारी की बातें, और कह ये रहे हैं कि भाई इसमें एक लड़कियों को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई और भी न जाने क्या क्या हो गया, लेकिन इवेंचुअली आप देखिए ना, फिल्में तो वही वाली चलती हैं। दैट इज द सैड पार्ट एंड दैट इज वाई I feel, where is this world going, है ना? तुझ बिन कि तुझ बिन नहीं लगता जी नहीं लगता। नोटबुक के साउंडट्रैक्स, एंड दैट रिमाइंड्स मी, इसमें नूतन की ग्रैंड डॉटर थी ना, तो कहाँ गई वो? एनीथिंग यू नो? गुड मॉर्निंग।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

और अगर आप रहते हैं पासर रिस या चांगी एरिया में तो फिर ये वाली खबर आपके लिए है। गुड मॉर्निंग। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24। 1 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ, मोर देन 100,000 रेजिडेंट्स ऑफ पासर रिस एंड चांगी विल सून ऑब्टेन अप टू 50% ऑफ फूड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर अ न्यू प्रोग्राम। मुझे तो ऑलरेडी लग रहा है ये क्या बात हुई भाई, 50% ऑफ, क्या बात है। सो दिस इज लॉन्च बाय द चांगी ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन। जी इसी वीकेंड पर चांगी डिलाइट्स कार्ड, जो कि होप करता है टू टैकल रेजिडेंट्स राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसर्न्स बाय ऑफरिंग द डिस्काउंट्स एट 27 नेबरहुड मर्चेंट्स, जो कि हैं ईटरीज हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, पेट ग्रूमिंग सेंटर्स हैं, बहुत कुछ है, और ब्यूटी सैलॉन्स भी। ये कब से नेसेसरी एसेंशियल्स में आ गया। वेल, हाल ही में बात हो रही थी एक चांगी फैमिली डे इवेंट पर जो कि लोयांग पॉइंट में हुआ। मिनिस्टर फॉर नेशनल डेवलपमेंट ची होंग थाट ने कहा दैट इट इज इम्पोर्टेंट दैट लोकल कम्युनिटी पार्टनर्स वर्क अलोंगसाइड द गवर्नमेंट एड लाइक सीडीसी वाउचर्स टू एड्रेस कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसर्न्स एंड इम्प्रूव कम्युनल फैसिलिटीज। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका मतलब है वी फर्स्ट सोसाइटी, जहां हम सब इकट्ठा काम करें, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट इन पार्टनरशिप विद द बिजनेसेस, द कम्युनिटी ग्रुप्स, विद द पीपल टू प्रोड्यूस गुड आउटकम्स फॉर आवर सोसाइटी एंड सिटीजंस। बहुत ही बढ़िया ख्याल, जी हाँ बिल्कुल। साथ ही में जो एमपी हैं वैलरी ली, उन्होंने सारे के सारे रेजिडेंट्स और मर्चेंट्स को विजिट किया, चांगी विलेज हॉकर सेंटर गए, लोयांग पॉइंट में गई, एंड साथ ही में उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बात करा। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग टू हेल्प पीपल व्हेन दे रियली नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, इजंट दैट व्हाट वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स। Right on Radio Masti 24/7, we're going to take a short musical break aur main aapko milungi agle ek ghante yahan par।

0: फोन मेरे बजते चले जा रहे हैं. जी हाँ बिल्कुल, लाइन लाइन लाइन लिख रहे हैं सब. तो ठीक है, आप मतलब दहाड़ के लिखिए इस बार और हम जल्दी से जवाब देंगे. टू बी अ पार्ट ऑफ द लाइन सिटी चैलेंज. गुड मॉर्निंग.
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh made
3: a And welcome once again. Abhijit Kuspar, Renuka with you. Radio Musti 24/7 par chal raha hai The Morning Show. Serious headlines with a not so serious vibe. Only on The Morning Show on Radio Musti 24/7. US President Donald Trump ki baat karein to wo milenge Middle Eastern leaders se and attend a working session with Ukrainian President Zelensky during the G7 summit in France next week. Aisa pata laga hai US ke admin officials se isi weekend par. Trump is going to be traveling to France for the G7 summit. Ji haan, aaj hi ke din mein, after attending mixed martial arts event at the White House, jo ki kal ho chuka hai. He will speak to several European leaders with whom he has squabbled over trade, tariffs, Ukraine and NATO since his return to the White House early in 2025. Trump participate karenge ek working session mein, ji haan, Zelensky ke saath mein aur G7 leaders ke saath mein. And the meeting comes at a time when Russian advances in Ukraine have slowed and Ukraine seeks more military funding from its allies. एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने कुछ ऐसा बताया कि ट्रंप के ट्रिप के बारे में ये भी पता लगा है कि रशियन गेन्स जो हैं इन पूरे सिचुएशन में इट हैज मोर और लेस स्टॉप्ड एंड देयरफॉर वॉर को एंड करने की बातें चल रही हैं. वेल, ट्रंप हैज हैड अप एंड डाउन रिलेशंस ज़ेलेंस्की के साथ में. कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई है, कोई प्लानिंग भी नहीं है, बट द टू लीडर्स कुड मीट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट. और साथ ही साथ में ये भी कहा कि ट्रंप वुड मीट सेपरेट with the leaders of Egypt, Qatar, United Arab Emirates, France and India. June 15th se 17th ho raha hai ye G7 summit France mein aur aaj se ye khabrein aur bhi zyada aap tak pahunch jayengi. Isi ke saath mein agla gana hamara
4: dur se aaye hai badi der se aaye.
3: It's a beautiful track from Donkey.
4: Na koi samjhe.
3: And followed by Don't Worry, हम जहाँ थोड़ा सा ऐसा शांत गाना सुनाते हैं वह थोड़ा हंगामा करके उसको बैलेंस कर देते हैं.
4: मेरा बनने लगा.
3: All right, Radio Musti 24/7. Let's take a short break.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: भाई जहां मैं स्पेलिंग सीख रही हूं और नंबर ऑफ जीरो सीख रही हूं, वहां मैं देख रही हूं कि एलन मस्क इस समय ऑफिशियली बन चुके हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर। जी हां, ट्रिलियनेयर।
1: सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब, ओनली ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती।
0: ऑलराइट, कैसे बन गए, क्या हो गया कि हम मंडे सुबह उठे और दुनिया में एक ट्रिलियनेयर पैदा हो गया है? Well, this is following the record-breaking NASDAQ debut of SpaceX, जो है the rocket maker, जो उन्होंने ढूंढा था 2002 में। Well, of course, he founded this company and इस समय इनकी जो net worth है, it has increased to an estimated US dollars 1.1 trillion, जी हाँ, which is 1.41 trillion Singapore dollars, जब से ये stock trading शुरुआत करी है। पहले भी एलन मस्क दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान थे। जी हाँ, ही वॉज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन विद अ नेटवर्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 982 बिलियन यूएस डॉलर्स बिफोर स्पेसएक्स आईपीओ। और इस समय 150 यूएस डॉलर्स में डेब्यू किया स्पेसएक्स के शेयर ने, जी हाँ, और इसी वीकेंड पर, और साथ ही में इट वेंट टू अ हाई ऑफ 176.52 यूएस डॉलर्स ड्यूरिंग द सेशन बिफोर क्लोजिंग 7% हायर एट 160.95। मस्क जो है वो एस्टिमेटेड 42% स्टेक है उनका स्पेसएक्स में, और ये रॉकेट सैटेलाइट और एआई कंपनी है द हार्ट ऑफ हिज बिजनेस एम्पायर, विच रेज्ड अ रिकॉर्ड 75 बिलियन यूएस डॉलर्स ड्यूरिंग इट्स आईपीओ, वैल्यूइंग इट एट 1.77 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इन्वेस्टर्स, अगर सिंगापुर में आप देख रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं स्पेसएक्स में, तो वेल लेट मी टेल यू दैट यू कैन बाय एंड सेल स्पेसएक्स शेयर्स इन द ओपन मार्केट थ्रू ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म सच एज टाइगर ब्रोकर्स, मूमू एंड साइफ। वेल, आई होप आप भी ट्रिलियनेयर बन जाए, सिर्फ रुपया में नहीं लेकिन डॉलर्स की बात कर रही हूँ। मैं दुखी गाना ही निकलेगा इस बात पर तो मुंह से। रेडियो मस्ती 24/7 पर कमिंग अप, ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द बंग 3 राइट नाउ।

0: All right, back to our Bollywood ki khabar for this ghanta. Well, let me tell you, the CBFC, which is the Central Board of Film Certification, usne grant kiya hai adult certificate. Ji haan, A certificate. Bade time ke baad mein adult film aayi hai. Cocktail 2 ko, ji haan, just before it is about to hit the big screens on June 19th. Monday Coffee ka best partner. The Morning Show on Radio Masti 24/7. News, views and a pinch. Homi Ajania ne is film ko direct kiya hai, and this film features a fresh lead cast of Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna. एक नई स्टोरी लाइन है. द फिल्म इज सर्विंग एज अ स्पिरिचुअल फॉलो अप टू द हिट 2012 की रोमांटिक कॉमेडी विच वॉज कॉकटेल, जिसमें हमने देखा था ओरिजिनल वाली में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी को. वेल, अब इस टाइम पता कुछ ऐसा लगा है कि ये फिल्म जो है 150 मिनट की है. जी हाँ, 2.5 घंटे की. दिस मेक्स इट जस्ट 4 मिनट्स लॉन्गर देन द ओरिजिनल 2012 रोमांटिक ड्रामा जो कि 146 मिनट्स की थी. होमी अजानिया एंड प्रोड्यूसर दिनेश विजन दोनों के दोनों आपस आ रहे हैं इकट्ठे इस फिल्म के लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और अब देखने की ये बात है कि क्या वाकई ये फिल्म पिछली वाली फिल्म को पीछे छोड़ पाएगी या नॉट रियली. वेल, इस सर्टिफिकेशन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है. कृति सानन, जो नॉर्मली फैमिली फ्रेंडली हिट्स के लिए जानी जाती हैं, बरेली की बर्फी, मिमी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया टाइप्स, उनकी ये पहली एडल्ट फिल्म है. और रश्मिका मंदाना, जो खैर पहले भी एडल्ट फिल्मों की तरफ जा चुकी हैं जैसे कि एनिमल, तो वेल उनके लिए तो बिल्कुल कोई नई बात नहीं है. एंड शाहिद, हु इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ द ट्रायो रिगार्डिंग एडल्ट रिलेटेड रेटेड सिनेमा एज वेल, तो पहले ए फिल्म में उनकी थी कमीने, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह और रोमियो, एंड इस समय वेल ही इज गोइंग टू गेट दिस वन एज वेल. लेट्स वेट एंड वॉच गाइस, क्या होता है इस फिल्म का, आप देखोगे कि नहीं देखोगे, मुझे आई एम रियली नॉट श्योर. I probably wait for the OTT release, right? Radio Masti 24/7 sunte gaana sath sath. Good morning.
1: Radio Masti 24/7 live, a part of Masti Media Network Singapore. Check it out.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: और ये खबर भारत से, जी हाँ, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने कल ही के दिन में कुछ ऐसा कहा कि इंडिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है फ्रॉम बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ ग्लोबल सॉल्यूशंस टू अ कंट्रीब्यूटर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग ऑन द मॉर्निंग शो, माय नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया। सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 20. भारत इनोवेट्स 2026, जी हाँ, इस चीज की इनॉग्रेशन हो रही थी। दिस इज इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम, जहां पर डिस्प्ले किया जा रहा है इन फ्रांस। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि बहुत ही जल्दी इंडिया का पूरा इकोसिस्टम है वो एक्सपैंड हो रहा है, एंड इट इज प्लेइंग अ रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भारत इस समय इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूशन कंट्रीब्यूटर रादर देन अ सॉल्यूशन कंज्यूमर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने आगे ये भी कहा कि भारत इनोवेट कर रहा है स्पीड और स्केल दोनों के साथ ही, विद अ फोकस ऑन क्रिएटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दैट बेनिफिट नॉट ओनली इट्स ओन सिटीजंस बट ऑल्सो द ग्लोबल कम्युनिटी। भारत क्या क्या कर रहा है? वेल, इस टाइम पर इंडिया का अप्रोच की बात भी हो रही है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये भी कहा दैट द कंट्रीज प्रायोरिटी इज टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथ ही में ये कहा दैट इनोवेशन इज डीपली एम्बेडेड इन इंडियाज कल्चर एंड वे ऑफ थिंकिंग, इनोवेशन इज इन इंडियाज डीएनए। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्रेज द ग्रोइंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, डिस्क्राइबिंग इट एज अ रिलेशनशिप रूटेड इन शेयर वैल्यूज, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। वेल, भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप के बारे में बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक। वेल, दैट टॉक्स अबाउट भारत इनोवेट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन नीस इन फ्रांस। बहुत से स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स भारत, फ्रांस और सेवरल कंट्रीज से इस समय इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, एंड आई विल बी बैक विद वन फाइनल न्यूज वेरी सून। Good morning.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: ऑलराइट, इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आपको इतना बताना चाहूंगी कि आप प्रॉपर्टी मार्केट में जो कर रहे हैं ना, उसकी खबर हमको मिल चुकी है। गुड मॉर्निंग।
1: सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti.
0: Well, Singapore की प्रॉपर्टी मार्केट से हमें इस टाइम पर फोन करके ये बताया गया है कि रीसेल कॉन्डोज जो है ना, वो मार्केट में कुछ ज्यादा ही दिन टिके हुए हैं, क्योंकि बायर्स अपना टाइम ले रहे हैं और सेलर्स जो हैं, वो प्राइस को कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। Good morning on the morning show. Well, I want to, before I say bye-bye from my show, I just want to say something that aajkal jo resale hai na, sara ka sare condos, wo kuch zyada hi time reh rahi hai. Where agents bata rahe hain ki buyers bade sari choices le rahe hain among the resale units aur wo apna time le

चाहें, विच आई इंसिस्ट दैट यू शुड, तो हमें लिख भेजिए लायन एंड प्लीज सेंड अस व्हाट्सएप. एंड वेरी सिंपल, वी आर जस्ट गोइंग टू सेंड यू टू क्वेश्चंस. वंस यू आंसर देम राइट, फिर आपको आएगा एक ईमेल जिसमें लिखा होगा सारे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द शूट विच इज गोना हैपन इन आवर स्टूडियो. एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लायन सिटी चैलेंज, जिसमें कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मस्ती भरा वो पूरा का पूरा शो होगा, एंड यू कैन विन कैश एज वेल एज प्राइजेस. ऑन दैट नोट, दिस इज रेणुका साइनिंग ऑफ एंड लीविंग यू विद अ ब्यूटिफुल मंडे अहेड, एंड ऑफ कोर्स इंश्योरिंग दैट यू ऑल्सो हैव अ ग्रेट वीक जो आगे होगा ना, बड़ा ही प्रोडक्टिव टाइप. मजे करो और मुझे मत भूल जाना. ऑलराइट, रेडियो मस्ती 24/7, इट्स गुड बाय फ्रॉम द मॉर्निंग शो.

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे आपकी नॉलेज आपकी जीत।
2: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above, selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर ऐप मेन्यू।
5: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
6: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो सिंगापुर, नमस्कार, वेलकम, और आपका स्वागत है आपके फेवरेट कंपेनियन के साथ जो है मस्ती हैंग आउट मुग्धा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ आरजे मुग्धा लाइव फ्रॉम द स्टूडियो, और मुझे ना उम्मीद है कि आपका ये जो मंडे है अब तक आपका साथ अच्छे से निभा रहा होगा और इसका जो बिहेवियर है वो आपके लिए ठीक ही होगा, है ना। अगर नहीं भी तो चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक हम मूड को थोड़ा लाइटर और थोड़ा सा ब्राइटर, डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने वाले हैं। अब देखो क्या है, आज है June 15, ठीक है, और दुनिया भर में ना वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी ना सबसे बड़ी काइंडनेस सिर्फ इतनी होती है कि हम अपना थोड़ा सा वक्त और जो अटेंशन है अपने अपनों को दें, दोज एल्डरली पीपल, है ना। तो आज का दिन चाहे कैसा भी रहा हो, फिलहाल आप चाहे जैसे भी हो, गुड कॉन्वर्जेशन, इंटरेस्टिंग स्टोरीज और रिलेटेबल मोमेंट्स जो है ऑफ कोर्स आपका इंतजार कर रहे हैं विद अमेजिंग म्यूजिक। तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए जरा सा।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: सिंगापुर, एक ऑनेस्ट सवाल आपसे, आपके घर में सबसे ज्यादा स्पेस क्या लेता है? फर्नीचर, ऑनलाइन शॉपिंग के बॉक्सेस, या फिर वो चीजें जो हम बाद में देख लेंगे ऐसे कह करके किनारे रख देते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा कचरा निकालते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम करता है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचते। और अब एक अपडेट सामने आई है जो हमें सोचने पर मजबूर करने वाली है। जुलाई 1 से सिंगापुर हाउस होल्ड्स को जब वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए थोड़ा उनको ज्यादा पे करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज, उनका कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सस्टेनेबली चलाने के लिए फीस को रिवाइज किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशनल और जो मैन पावर कॉस्ट है ना वो बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है इस स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट प्राइस इंक्रीज नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम जो चीज डस्टबिन में डालते हैं ना, उसकी जर्नी वहीं खत्म नहीं होती है, उसके बाद कलेक्शन होता है, सॉर्टिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, और एक पूरा इनविजिबल नेटवर्क जो है वो काम करता है। हम नॉर्मली इसको नोटिस करते ही नहीं है, शायद इसीलिए कभी कभी किसी शहर की एफिशिएंसी उसकी टॉलेस्ट बिल्डिंग से नहीं आकी जाती है, उसके डस्टबिन और क्लीनलीनेस से समझ में आती है। और सिंगापुर, भैया देखो, सिंगापुर नौ शहरों में से एक है जहाँ पे क्लीनलीनेस हमें इतनी नेचुरली मिलती है कि हम उसके पीछे की जो मेहनत है उसको देखते ही नहीं है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: इस शहर के बारे में एक ऐसा सवाल है जो आपको बड़े से बड़े क्विज को भी हरवा सकता है, वेदर। आज सुबह ना कितने लोगों ने एसी बंद करके ब्लैंकेट को थोड़ा और ऊपर खींचा था। हाँ, बीते कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि जो शहर नॉर्मली हीट और ह्यूमिडिटी के लिए फेमस है, वहाँ पे टेम्परेचर सडनली गिर के 20.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, और ये 2026 का अब तक का सबसे लो टेम्परेचर है। वो क्या, पिछले कुछ दिनों से इतने ताने मार रहे थे सिंगापुर की गर्मी को कि लो नजर लग गई, और ऐसी चीजों को नजर लगे तो बड़ा मजा आ जाता है। गई गर्मी, आई सर्दी, पर अजीब है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंगापुर में 20 डिग्री सुनते ही लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक तुरंत स्वेटर निकाल लेते हैं और दूसरे वो जो कहते हैं अरे यार फाइनली द वेदर इज कंफर्टेबल, ऐसे हर जगह होते हैं। पर सच में एक बात बताऊं, सिंगापुर में ना कोल्ड वेदर इतना रेयर गेस्ट है कि जब आता है पूरा शहर उसके बारे में बात करता है। सो इफ यू आर फीलिंग द कोल्ड एंड द हीट एंड यू जस्ट नीड द स्वेटर, इसका मतलब बात करनी तो बनती है। जैसे कि मैंने कहा कि इकलौता ऐसा सवाल है जो आपके हर जवाब को गलत साबित कर सकता है, तो सवाल जवाब का दौर चला है, तो जस्ट लेट मी टेल यू एंड रिमाइंड यू कि सिंगापुर जो है आपके लिए लेकर क्या एक बहुत ही अमेजिंग गेम शो जिसका नाम है लायन सिटी चैलेंज। क्योंकि मस्ती मीडिया नेटवर्क जो है वो लेकर आया है द लायन सिटी चैलेंज, सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो वेयर नॉलेज विंस। आपको सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए होती, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, वो फीलिंग की मैं कर सकता हूँ। यस, अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं अपने नॉलेज को स्टूडियो लाइट्स के नीचे टेस्ट करने के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट एनी सिंपल गेम शो, ये प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्ट वाला गेम शो है जहां पे आप कंटेस्टेंट की कुर्सी पर बैठेंगे। तो यहां तक पहुंचने के लिए जस्ट नीड टू क्रॉस द फर्स्ट स्टेप। क्या है वो पहला स्टेप? LION, ये लिख के आपको भेजना है 9151896 पर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप एक स्टेप आगे चलेंगे, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। आगे बढ़ने के लिए आपको दो सवाल पूछे जाएंगे, उन दो सवालों के आपको सही सही जवाब देने हैं। उनका एक डोर विंडो ओपन है, मतलब एक जवाब देने का एक विंडो है जिसको अगर आपने दो दिन में जवाब दे दिया इतना ही मौका है। अगर वो सही जवाब दिए तो क्वालिफायर राउंड से आप और आगे जाएंगे एंड देन द प्रोसेस बिगिंस। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज LION टाइप करके लिखना है, भेजना है 9151896 पर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
3: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
4: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
3: थैंक यू
5: थैंक यू
4: थैंक यू
2: थैंक यू, वी लव यू।
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live.
8: Singapore. कुछ रेस्टोरेंट सिर्फ खाना सर्व नहीं करते, वो आपको मेमोरी सर्व करते हैं। शायद आपके पेरेंट्स के एनिवर्सरी डिनर आपने वहीं पर किया हो, कोई फैमिली सेलिब्रेशन हो जिसकी फोटोज अब भी आपकी गैलरी में हो और स्क्रॉल करते करते अरे यार यहाँ कहते, ऐसा होता है ना। या कोई ऐसी इवनिंग जो आपको याद आती हो सिर्फ स्पेशल खाने की खुशबू की वजह से, है ना, मतलब अमेजिंग फ्लेवर्स एंड ऑल दैट। और जब कोई रेस्टोरेंट 25 साल कंप्लीट करता है ना, तो वो सिर्फ एक बिजनेस माइलस्टोन नहीं होता उसके लिए।

वो क्या है ना, हजारों फैमिली डिनर्स, काउंटलेस जो सेलिब्रेशन होते हैं, वो बहुत सारी यादों का पिटारा होता है। इसी खुशी में ना शाही महारानिया ट्रैवल सिटी, यस, जो आपके हर एक फेस्टिवल में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, यस, उन्होंने 25 साल पूरे कर लिए हैं, 25 ईयर्स ऑफ रॉयल फ्लेवर। सो इस स्पेशल एनिवर्सरी मौके पर उन्होंने उनके सबसे जो लव्ड सिग्नेचर डिशेज है ना, बिलव्ड वंस, चिकन टिक्का है, तंदूरी चिकन है, पालक पनीर एंड मोस्ट ऑफ द फेवरेट्स, वो अवेलेबल है द स्पेशल एनिवर्सरी प्राइस $25+ प्लस प्लस सिंगापुर डॉलर्स। बस एक शर्त है कि आपका जो टोटल टेबल का जो बिल है ना, वो $100 या उसके ऊपर होना चाहिए। बस उसके बाद ये सारे जो सिग्नेचर डिशेज हैं वो आपको सिर्फ $25 में मिल जाएंगी, बिकॉज इट्स द सेलिब्रेशन ऑफ 25 ईयर्स, इसलिए ये स्पेशल प्राइस है। ये ऑफर वैलिड है ओनली टिल 30th June एंड डाइन इन पर। तो शायद ये परफेक्ट वक्त है एक और फैमिली मेमोरी क्रिएट करने का विद अ वेरी स्पेशल रेस्टोरेंट ऑन देयर वेरी स्पेशल ओकेजन, है ना। एक पुरानी फेवरेट मेमोरी को दोबारा ताज़ा कर लीजिए और एक पुराना फेवरेट टेस्ट कर लीजिए। रिजर्वेशंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं 6235-8840 पर।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, हैव यू एवर नोटिस्ड फिल्म का हीरो अनाउंस होता है, हीरोइन अनाउंस होती है, डेट अनाउंस होती है, बहुत एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाता है, पर कभी कभी एक विलन जो है आपकी कास्टिंग को कंप्लीट कर देता है, फिल्म को और इंटरेस्टिंग बना देती है उनकी एंट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट आवारा पंटू। इमरान हाशमी हैं, दिशा पाटनी है, लेकिन एक ऐसे कलाकार की एंट्री हुई है जिसके लिए कहा जाए तो उन्होंने पूरी फिल्म को कंप्लीट करने का जो जिम्मा है अपने कंधों पे ले लिया है। शबाना आजमी की एंट्री हुई है एज द नेगेटिव कैरेक्टर, इनका नाम है नफीसा, और कहा यह जा रहा है कि ये इस फिल्म में एक ऐसा गेम चेंजर रोल प्ले करने वाली हैं जो कि फिर से एक बार इमरान के प्यार पे छुरियां, चाकू, तलवार सब चला देगा। सो बेसिकली इस बार भी इमरान का प्यार मुकम्मल नहीं होगा रिफत भी। हाय बेचारे इमरान, जिस पिक्चर में आते हैं हीरोइन मरी जाती है। आवारापन तो स्पेशली ज्यादातर में हीरोइन मर जाती है तो कोई तो भूतनी बन जाती है, और जो मिलती है वो इनको नहीं मिलती, किसी और को मिलती है। खैर जो भी हो, मैं इसके म्यूजिक से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ हाई, मैं इस फिल्म से काफी हाई एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ। अब तो शबाना आजमी जी हैं तो उनसे तो

0: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। एक कन्फेशन करना आपसे, सच सच बताना, कई बार ऐसा होता है कि हमको भूख नहीं लगती, बस कुछ क्रंची खाने का मन कर रहा होता है ना, और उस वक्त अगर चॉइस टेस्टी भी हो, होलसम भी हो, तो बस उसके बाद आप 75 इयर्स में भी नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करने का मत रख सकते हैं। ये चॉइस तभी परफेक्ट हो सकती है जब आपका डिसीजन सही हो कि आपको कौन सी चीज कहां से पिक करनी है, एंड दैट्स व्हाई कृषिवल नट्स एंड जीजी मार्ट एक साथ आ गए और आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन लेकर के आए। नो सब है यहाँ पे, मैकेडेमिया नट्स, पिस्टाचियोस, कैलिफोर्नियन आलमंड्स, हेजल नट्स, पम्पकिन सीड नट पैक, सब कुछ है, और हर बाइट में फ्लेवर और गुडनेस जो है ना परफेक्ट बैलेंस में मिलेगा आपको। व्हाई स्पेशल जो है वो ये है कि उसका प्रॉमिस, एक बहुत ही सिंपल प्रॉमिस, फार्म फ्रेश होने का, सीधा नेचर से आपके प्लेट तक, 100% ऑर्गेनिक, नो पेस्टिसाइड्स, जस्ट प्योर गुडनेस। सस्टेनेबल पैकेजिंग भी है, क्योंकि ना सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगली बार जब स्नैक क्रेविंग्स आपको होने लग जाए तो कृषिवल नट्स अवेलेबल ऑन जीजी मार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा। वैसे तो ggmartonline.com आपको घर बैठे मिल जाएगा, आपको बस जाके टक टक टक टक टक टक ऑर्डर करना है और ऑर्डर प्लेस करके घर पे ऑर्डर करना है, सिंपल।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. You know what? बॉलीवुड में अगर किसी फ्रेंचाइजी का नाम सुनते दिमाग में chaos, confusion, अनलिमिटेड कॉमेडी आ जाए तो वो कौन सी फिल्म है? धमाल। अभी लास्ट बार भी मैंने आपसे धमाल का एक अपडेट शेयर किया था एंड द ट्रेलर हैज फाइनली अराइव्ड। इस बार भी अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी एंड संजय मिश्रा की जो गैंग है ना, धमाल मचाने के लिए नए ट्रेजर हंट पर निकल चुकी है। नया मैडनेस है और साथ में वापस आ रहे हैं ये सारे, तो आप समझ सकते हैं। ट्रेलर देखकर आपको लगता है कि एक काम करते हैं, सबसे पहले लॉजिक को घर छोड़ के आना। लॉजिक का कोई काम नहीं है यहाँ पे, छुट्टी है वो उसकी, बिल्कुल वेकेशन लंबा। कॉमेडी का फुल टाइम जॉब है, लॉजिक का कोई काम नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि धमाल फ्रेंचाइजी का जो फॉर्मूला है वो कॉम्प्लिकेटेड कभी रहा नहीं है। कुछ लोग होते हैं, एक खजाना होता है और उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता जो होता है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। असली ट्रेजर कभी कभी लाफ्टर होता है। एक्चुअली मंजिल से खूबसूरत तो सफर है, यही तो ऑनेस्टली शायद इसी वजह से लोग इस फ्रेंचाइजी को इतना पसंद करते, तभी कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। कभी कभी हमको सीरियस सिनेमा से ज्यादा ना बस हंसते हंसते लोट पोट होने की जरूरत होती है। आज की दुनिया में इतना टेंशन है कि बिना हंसे और हंसाए अगर आपका जीवन निकल गया तो व्यर्थ है।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
2: एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी,
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
4: वाह जी, क्या बात जी.
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कभी कभी किसी एक्टर की कमबैक न्यूज जो होती है फिल्म से ज्यादा डिस्कशन क्रिएट करती है, और ऐसा ही बज क्रिएट कर रही है कटरीना कैफ की कमबैक न्यूज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कटरीना का नाम ना चांदनी बार 2 से जोड़ा जा रहा है, वही तबू वाली चांदनी बार। अब ये फिल्म जो है इट हैज बीन अ कल्ट क्लासिक, चांदनी बार की सीक्वल बताई जा रही है ये। फिलहाल मेकर्स की तरफ से कास्टिंग को लेकर देखिए कोई ऑफिशियल अपडेट तो सामने आई है नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में पॉसिबिलिटी जो है इस बात की काफी चर्चा है कि शायद कटरीना इज गोइंग टू मेक अ कमबैक विद चांदनी बार 2। पर मुझे लग रहा है कि स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट ना इस फिल्म का टाइटल नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि ऑडियंस का रिलेशनशिप स्टार्स के साथ कितना यूनिक होता है, ये देखने वाली बात होगी जब कोई एक्टर कुछ वक्त के लिए, मतलब थोड़े लंबे ब्रेक के लिए स्क्रीन से दूर चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि वो एक्टर जो है कौन से कैरेक्टर के साथ वापस आ रहा है, लोग उससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, और उनको देख करके कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जहां तक कटरीना की बात है, आई एम प्रीटी श्योर उनके जो हार्ड कोर फैंस है वो बहुत वक्त से इंतजार कर ही रहे थे इस बात का। एंड नाउ शी इज ऑल सेट टू मेक अ कमबैक। जैसे कमबैक तो आप भी कर सकते हैं, बिकॉज ला एंड सिटी चैलेंज जो क्विज एक आया है ना हमारा सिंगापुर में, हमारा जो ये मस्ती मीडिया नेटवर्क है वो लेकर के आया है, इट्स गोना बी अमेजिंग फॉर यू। आपको सिर्फ LION लिख करके 9151893 पर भेजना है। ये गेम शो कोई ऐसा वैसा गेम शो नहीं है, ये प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर ये ब्रॉडकास्ट होगा, ऑडियंस होगी, आप कंटेस्टेंट होंगे, एक होस्ट होगा, मतलब हल्के में मत लेना। लेकिन उस हॉट सीट तक जाने के लिए आपको एक रास्ता तय करना है। पहला कदम है LION लिख के 9151893 पर भेजो। उसके बाद हम है ना सब संभालेंगे, क्वालिफायर राउंड, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सही जवाब, तब आगे बढ़ेगी गाड़ी। लेकिन पहला कदम तो रखो, LION लिखो और 9151893 पर भेजो, रजिस्टर करो। तब बात आगे बढ़ेगी, समझे बात को राजा।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, शो की थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, दिस आवर इज ऑल अबाउट अमेजिंग इंटरेस्टिंग न्यूज जो कि दुनिया भर से मैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर के आती हूँ। पर आपको क्या लगता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल है या इंटरनेट पे वायरल थ्योरीज को रोकना? मुझे लगता है दोनों ही बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस वक्त हर जगह एक ही फीवर है, वो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फीवर। और इन सबके बीच में एक बहुत ही पुरानी थ्योरी जो है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। ना लोग कह रहे हैं कि द सिम्पसन्स ने 1997 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2026 का वर्ल्ड कप फाइनल जो होगा वो मेक्सिको एंड पोर्टुगल यानी पुर्तगाल के बीच में होगा। थ्योरी एक बहुत ही पुराने एपिसोड के सीन पर बेस्ड है जहां पे मेक्सिको और पोर्टुगल का जो मैच है उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया। बट देयर इज अ ट्विस्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। बेसिकली उसका उस एपिसोड में ना तो किसी वर्ल्ड कप का मेंशन था, ना 2026 का था, ना किसी फिनाले का था। वो बस एक स्प्रिंगफील्ड जो उनका जगह है, उनका टाउन है, वहां पे होने वाला एक फिक्शनल फुटबॉल मैच का एक सीन था जिसे बाद में इंटरनेट ने अपनी इमेजिनेशन के साथ जो है कनेक्ट किया। फैक्ट चेक्स भी नहीं देखे, क्लेम भी सारे फॉल्स बता दिया। ऑनेस्टली मुझे लगता है ना कि स्टोरी फुटबॉल से ज्यादा ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। बट देन स्टिल कोइंसिडेंस इतना बड़ा वाला, कोइंसिडेंस जो है वो थोड़ा आसपास हो सकता है बट इतना बड़ा कोइंसिडेंस, वाओ। ह्यूमंस ना पैटर्न्स ढूंढना पसंद करते हैं चीजों में। पुरानी क्लिप का जो प्रोफेसी है वो उठा लिया एंड शायद इसीलिए द सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस हर कुछ सालों में ना फिर से ट्रेंड करने लग जाते हैं। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, नाउ दिस वन।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अक्सर आजकल चीजों को देखकर लगता है कि AI
2: है ना, लेकिन फिर पता चलता नहीं, AI नहीं है, नेचर ने खुद ये मास्टरपीस क्रिएट किया है। बताने के लिए भाई साहब, AI से ऊपर अपना इच, इधर इच बैठा है। नेचर ने ये मास्टरपीस खुद बनाया, और कहाँ बनाया? इंडोनेशिया। एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग इमेज सामने आई है, जहाँ पे आसमान में मल्टीपल रेनबोज एक साथ एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नजर आए, और पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे हम अवेंजर्स देख रहे हैं, और एक किसी और ही पोर्टल कोई खुल गया किसी और दुनिया में जाने के लिए, ग्लोइंग गेटवे जैसा लग रहा था। एंड पता सबसे फैसिनेटिंग बात क्या थी, ये कोई डिजिटल इफेक्ट या कोई AI जनरेटेड इमेज नहीं थी। साइंटिस्ट के मुताबिक एक एक्सट्रीमली रेयर ऑप्टिकल फिनोमेना था, जो कि रिफ्लेक्शन रेनबो और सुपर न्यूमरेसी आर्क्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। भावारे इतना तो मैंने पढ़ा होता तो बात ही क्या थी। सीधी सी बात है, समंदर की सरफेस ने सनलाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट किया जैसे पानी के नीचे एक सेकेंड एक सन हो, दूसरा सन हो, और रिफ्लेक्शंस ने आसमान में ये पूरा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेनबो पैटर्न क्रिएट कर दिया। सी व्हाट आई फील, नेचर ना कभी बोरिंग होता ही नहीं है। हम टेक्नोलॉजी से कितनी भी अमेजिंग चीजें बना लें, कभी कभी असली दुनिया हमें याद दिला देती है कि इमेजिनेशन का ओरिजिनल वर्जन नेचर के पास ही है और किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए कुछ नज़ारे देखकर ना हम एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा वंडर फील करते हैं, क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ को समझना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट यार, जो है वो जैसे छोड़ दो, उसको देखो, एंजॉय करो, एंड टेक अ डीप ब्रेथ और आगे बढ़ो।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आपकी नॉलेज, आपकी जीत।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7
1: Live. Hi Singapore. Have you ever noticed? कुछ लोग ना रूम में एंटर करते ही अटेंशन ले लेते हैं सबका। ना उनके पास कोई सेलिब्रिटी स्टेटस होता है, ना कोई स्पॉटलाइट होती है, लेकिन जब वो बोलते हैं ना, लोग सुनते हैं उनको। अब चाहे वो ऑफिस का प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो स्कूल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो वेडिंग होस्ट करना हो, या कोई एक सिंपल कॉन्वर्सेशन हो, कहीं भी कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जो हर जगह काम आता है, राइट? और इसी स्किल को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं द आरजे अकेडमी बाय मस्ती मीडिया नेटवर्क। तो ये सिर्फ आरजे बनने का कोर्स नहीं है, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, वॉइस कंट्रोल, ऑडियंस जेनरेशन, एंगेजमेंट सीखने का पूरा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। हाइब्रिड लर्निंग मॉडल है, फ्लेक्सिबल सिलेबस है, बिगिनर से एडवांस तक की पूरी ट्रेनिंग है, एंड सिलेक्टेड ट्रेनीज को पता है क्या मौका मिलेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, 24/7 पर लाइव शो होस्ट करने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। तो सवाल ये नहीं है कि आप आरजे बनना चाहते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप चाहते हैं कि जब आप बोलें तो लोग आपको सुने वाकई में। अगर जवाब हाँ है तो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखिए और उसको भेजिए हमारे इस मेल आईडी पर, एंड द मेल आईडी इज info@radiomasti.com.sg पर। द आरजे अकेडमी, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस कैन ओपन अनएक्सपेक्टेड डोर्स। समझे?

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज़म मिलेगा. Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live.
6: And बस देखते देखते आज का मस्ती हैंग आउट अपने अंत तक आ चुका है. आज हमने काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर बात की, कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स डिस्कवर किए, थोड़ा सा हंसे, थोड़ा सोचा. उम्मीद है कि आपका जो दिन मेरे साथ इस शो में बीता है वो एंजॉयबल ही रहा होगा. वैसे मुझे लगता है कि रेडियो की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? We just can't see each other. हम नहीं देख सकते एक दूसरे को, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन बन जाता है. कोई ऑफिस से घर जा रहा होता है, कोई नाइट शिफ्ट पर होता है, कोई डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है, और रेडियो बस चल रहा होता है, और फिर भी कुछ देर के लिए हम सब एक ही कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाते हैं. इसीलिए आपका साथ हमेशा स्पेशल ही होता है. थैंक यू, जस्ट थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम विद मी. अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, मुस्कुराते रहिए, और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना मत भूलिएगा. एंड अचानक से अगर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक काम करना बंद कर दे, घबराइए मत. अभी पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था, पूरा इंस्टाग्राम फेसबुक ठप हो गया था. मैं भी परेशान हो गई थी, मैंने कहा मेरा पेज. लाइफ में ग्लिच होते रहते हैं, बड़े बड़े दिशा में छोटी छोटी बातें होती रहती है. समझे? बाय बाय, टेक केयर.

0: नचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
6: I love you, रसना।
5: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali Antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Masti 24/7 Live.

0: प्रणाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
3: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
1: टाइम टू रेज द बार, मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh
4: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
5: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: गए।
1: वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में, सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओह माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you. Welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. Good morning सपना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी जिंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम है जी, वेलकम आपका बहुत बहुत, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे। आई एम श्योर मौसम और भी बेहतर हो जाएगा, पिछले हफ्ते आप जानते हैं 20 point something डिग्रीज पर पहुंच गया था यहाँ का मौसम सिंगापुर में, तो बड़ी हैरानी हुई, इसे फील नहीं हुआ मेरे को, फील फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने कुछ ऐसा कहा तो मुझे लगा वाह भाई, मतलब मौसम वाकई बदल रहा है। लेकिन आज की शुरुआत करेंगे हम एक बढ़िया के बढ़िया से कोट के साथ में, जो हमेशा करते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, मोह मोह के धागे, सुनेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना, एंड यू विल फील सो सो सो अमेजिंग, आई प्रोमिस यू दैट। रेडियो मस्ती 24/7, बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास, और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी फॉर द न्यूज एंड द अपडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज रेणुका विद यू, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क, एंड यस दिस इज द मॉर्निंग शो।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड
5: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: जय

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: आर यू रेडी?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे,
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही RJs आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओह माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you. Welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. गुड मॉर्निंग सपना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी जिंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम है जी, वेलकम आपका बहुत बहुत, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे। आई एम श्योर मौसम और भी बेहतर हो जाएगा, पिछले हफ्ते आप जानते हैं 20 point something डिग्रीज पर पहुंच गया था यहाँ का मौसम सिंगापुर में, तो बड़ी हैरानी हुई, इसे फील नहीं हुआ मेरे को, फील फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने कुछ ऐसा कहा तो मुझे लगा वाह भाई, मतलब मौसम वाकई बदल रहा है। लेकिन आज की शुरुआत करेंगे हम एक बढ़िया के बढ़िया से कोट के साथ में, जो हमेशा करते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, मोह मोह के धागे, सुनेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना, एंड यू विल फील सो सो सो अमेजिंग, आई प्रॉमिस यू दैट। रेडियो मस्ती 24/7, बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास, और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी फॉर द न्यूज एंड द अपडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज रेणुका विद यू, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क, एंड यस दिस इज द मॉर्निंग शो।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7. की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश, योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live pe.
2: Josh mein raho. DJ wale babu mera gana chala to, DJ wale babu mera gana chala to, DJ wale babu mera gana chala to, gana chala to, gana chala to.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, अंधा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 3, 2, 1.
0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: अर्जुन आएंगे
0: न? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। Check it out.

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: यस पिंक गुलाब ही स्काई क्योंकि इसी मूवी ने हमको ये भी सिखाया है दैट स्काई किसी भी कलर का हो सकता है बस जो नजर से आप देखो स्काई का कलर वही होगा आई नो हेलो हाय वेलकम नमस्ते गुड इवनिंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यहाँ पे घड़ी पे बज चुके हैं 5:05 और क्या होता है मंडे की शाम जब होती है तो आ जाती है अंतरा और शुरू हो जाता है आपका हमारा सबसे फेवरेट वाला एक्चुअली हर शो में जब भी मैं आती हूँ यही कहती हूँ कि सबसे फेवरेट वाला बट इट्स स्पेशल राइट इट्स मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जहाँ पे आपकी चॉइस के गाने प्ले होते हैं आप जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे मैं आपके जो नो पसंदीदा गाने यहाँ पर प्ले कर जाती हूँ एंड वो जो स्माइल आती है ना उसके बाद आपके चेहरे पर दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग एंड विच मेक्स मी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी एट द सेम टाइम है ना तो बताए कैसा गया आपका ये वाला वीकेंड ऐसा नहीं लगता कभी कभी की जिंदगी इतनी रूटीन में चल रही होती है कि एक वीकेंड के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा सब ऐसा निकलता हुआ सा जा रहा है बट सच तो यही मेरे दोस्त दैट वक्त जो है वो निकलता ही जा रहा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है या हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पा रहे हैं कि बस ऐसा ही कुछ कंफ्यूजिंग से जो है कई दो चार विचार ऐसे उधर से उधर कूदा फांदी मार रहे हैं तो मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ भी यहाँ पर शेयर कर देती हूँ वेल अपार्ट फ्रॉम दैट यस आई टोल्ड यू लास्ट वीक कि मैं पक्का बिंज वॉच करूंगी कुछ ना कुछ इस वीकेंड में एंड फाइनली आई डिड दैट बिंज वॉच मतलब बैक टू बैक अप बहुत सारा कुछ एक साथ देख लेते हैं लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई एंड दैट इज माय हर बार की दुखद कहानी की अगर मैं खत्म कर देती बट आई एम सो क्यूरियस सो आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो दैट व्हाट डिड आई वॉच एंड एवरीथिंग एल्स बट दुनिया में ब्रो बहुत सारा कुछ हो रहा है यार चलो अब धीरे धीरे करके आ ही गए हैं तो बता ही देंगे लेकिन फिलहाल जब तक आप सोचो 9151896 पर मुझे बताओ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो तब तक मेरी पसंद के गाने सुनते हुए आगे बढ़ते हैं रेडियो मस्ती 24/7 Live. Good evening.

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.
3: To Shahi Maharani for the special treat.
4: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
5: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
4: Thank you.
6: Thank you.
5: Thank you.
3: Thank you. We love you.
7: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffles City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 62358840. Terms and conditions apply.
8: Warning. गाना बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. You say, we play.
9: 5:00 हो चुके हैं 17 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ट्रैप के साथ और यहाँ पर चल रहा मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. भाई भाई ने जो है अलग ही यहाँ पर रायता फैला रखा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं. सो वेल, कहानी कुछ ऐसी है. गॉसिप से ही बिल्कुल शुरू करते हैं. इट्स नॉट गॉसिप, बस बेसिकली बात जो है बिल्कुल इधर से उधर उधर से उधर होती हुई जा रही है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष जिसको कहते हैं जी हाँ हिंदी में वो नहीं निकल पा रहा है. तो वह बात है सलमान खान का जो लेटेस्ट वाला कोर्ट केस, नो जहां पे ये खुद इन्वॉल्व है वैसे एक तरह से. सो एक मूवी जो है किसी ने बनाई, उसका नाम दे दिया मूवी बनाकर काला हिरन. ओके, एंड यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट इज वेरी फेंटली बेस्ड ऑन, ऐसा कहते हैं ना मूवीज के लिए जब इंस्पायर होके कोई भी कुछ भी किसी कहानी पे बनाते हैं, कि इट लूजली एंड फेंटली बेस्ड ऑन द ब्लैक बक पोचिंग केस जो है, जो सलमान खान का अभी तक वो चलता हुआ ही जा रहा है. तो बीच सबसे पहले आई थिंक मैंने एक खबर यहाँ पर दी थी कि ये वाली मूवी रिलीज हुई है, एंड आई वॉज सरप्राइज. मैंने कहा कि ये क्या सलमान खान को पता है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है? तो apparently उनको पता नहीं था, लेकिन obviously आप फिल्म रिलीज कर रहे हो हो ही नहीं सकता कि भाई को पता ना चले. So भाई को पता चला. भाई ने पता नहीं क्या किया, हमारे ये जो फिल्म मेकर है जिन्होंने, जो डायरेक्टर साहब है, उन्होंने जो है एक वीडियो बनाया जहां पर उन्होंने कुछ ये लीगल पेपर्स फाड़ते हुए वो नजर आए कि भाई तुम्हें जो केस करना है कर लो, मैं तो ये मूवी अभी रिलीज करके ही मानूंगा, और ये जो तुमने मुझे यहाँ पर जो गुंडे भिजवाए हैं, एंड ही सेड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मुझे किसी चीज पे से भी कोई बात का डर नहीं लगता. सो नाउ दिस हैपेंड एंड द नेक्स्ट डे द टीजर जो है इस मूवी का गॉट रिलीज्ड, वेयर इन द टीजर मिस्टर गोविंद नामदेव, जो कि एक इंडस्ट्री के काफी जाने मानी शख्सियत है, उनका चेहरा भी नजर आया. तो लोगों ने कहा सर आप तो सलमान के अच्छे, आप इस मूवी में कैसे? तो उन्होंने कहा दैट ही वॉज ट्रीटेड बाय काला हिरन मेकर्स. आई एंड सलमान खान आर गुड फ्रेंड्स. इफ आई हैड एन आइडिया व्हाट दे आर मेकिंग आई वुड हैव नेवर साइंड इट. दे नरेटेड मी अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड आई एम फीलिंग चीटेड. सर लेकिन सर द टाइटल गिव्स अवे एवरीथिंग सर. सर सर सर सर. सो वेल, अभी मुझे पता नहीं कि अब इसके आगे क्या हुआ है. अभी वही का वही है. अभी तक तो ये मूवी रिलीज हो रही है, दैट इज फॉर श्योर. बट अब इसके आगे भी अगर कुछ होता है तो हम आपको रखेंगे बिल्कुल अपडेटेड ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. भाई से पंगे.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को दिल्ली वाला बॉयफ्रेंड देखा कर, लेकिन अभी फिलहाल सबको छोड़ छाड़ के जब बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में 5:30, आइए आपको बताया जाए कि सिंगापुर में जो है सड़कों का क्या है हालचाल। वेकअप ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स इट वाज आफ्टर KJE, अवॉइड करें लेन नंबर 5। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन SLE टुवर्ड्स CTE आफ्टर लेंटो एवेन्यू, अवॉइड करें लेन नंबर 5 अगेन। हेवी ट्रैफिक इस वक्त आपको मिलेगा ऑन BKE टुवर्ड्स वुडलैंड्स एट वुडलैंड्स रोड एग्जिट। That's right, ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। बाकी हमारा जो है अपडेट आप देंगे कि आपने अभी तक भेजा कि नहीं लायन लिख के। अब आप बोलोगे कि ये क्या है। कई सारे लोग होते हैं कि कुछ कुछ टाइम पे वो ट्यूरन करते हैं और सडनली हम लोग बात करने लग जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि किस बारे में बात हो रही है। भाई एक बहुत ही कमाल का वन ऑफ अ काइंड गेम शो जो है मस्ती मीडिया नेटवर्क हम यानी कि लाने वाले हैं, विच इज द लायन सिटी चैलेंज। इट्स ऑल अबाउट यू नो आपका जो है IQ कितना अच्छा है, ऑल अबाउट आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, ग्लोबल अपडेट से आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखते हो एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। But this is the time to flex it out, right? You just have to type lion, L-I-O-N, and send it to 915-8963 to get into the first phase of participation. Once you send us that, उसके बाद फिर आपको आगे के स्टेप्स की तरफ हमारी टीम जो है गाइड करती रहेगी, लेकिन उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा एंड वो आप कर सकते हैं अभी के अभी। टाइप दैट LION लायन एंड क्विकली सेंड इट टू 915-8963।
3: Are you ready?
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 915-18963.
5: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
6: Check it out.

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

0: के हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ यहाँ पर मस्ती बॉयस आपकी चॉइस। इट्स मंडे इवनिंग, 15 जून हो चुका है। जी हाँ, आधा महीना जून का भी निकल गया है दोस्तों। दैट इज हाउ टाइम इज फ्लाइंग, बट टाइम्स आर चेंजिंग एज वेल आई कैन सी। जब इस तरह की कहानियां जो है वो फ्लोट होती है, वायरल होती है, आई रियली रियली लाइक इट एंड आई ऑलवेज काइंड ऑफ ट्राई एंड मेक इट अ पॉइंट कि मैं कुछ कुछ बातें जो है बिल्कुल आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ। भाई, एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप जो है काफी अटेंशन इसको मिला हुआ है क्योंकि उनके फाउंडर जो है उन्होंने एक नया इंटर्न रखा है। अब आप कहोगे कि यार इंटर्न तो मोस्टली कंपनीज रहती हैं, इसमें कौन सी अलग बात हो गई अंतरा? ये जो इंटर्न है इज अ 64-year-old इंटर्न। दिस वाज अ वेरी अनयूजुअल हायरिंग एंड व्हेन वी सी इंडिया का जॉब मार्केट प्लेस एंड एवरीवेयर, सो वहां के लिए तो और भी ज्यादा अनयूजुअल हो गया एंड इट एक्चुअली चैलेंज्ड कई सारे ट्रेडिशनल आइडियाज अबाउट एज एंड इंटर्नशिप्स। इन फैक्ट इफ यू रिमेंबर, हैव यू सीन द मूवी द इंटर्न? No, you have to watch it. It's just beautiful movie. But anyways, coming back to this kahani. So basically, जब भी interns की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि भाई young professionals या students जो हैं जो शायद अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, third year में हैं, तो उनको थोड़ा सा work extra चाहिए, तो उसके लिए उनको internship में रखा जाता है। So well, कहा गया कि भाई ये जो senior intern है join the company क्योंकि वो professionally active रहना चाहते थे। वो retire हो चुके हैं but then he wanted to be professionally active एंड कॉन्ट्रीब्यूट उन्होंने जो अभी तक सीखा है, हिज एक्सपीरियंस रादर देन सिटिंग एट होम आफ्टर हिज रिटायरमेंट। सो द फाउंडर डिस्क्राइब्ड हिम एज समवन विद वैल्यूएबल नॉलेज ऑफ बिल्डिंग एंड स्केलिंग कंपनीज। एंड ये जो वीडियो काफी वायरल हो रहा है ऑफ द सेम ऑफ दिस हमारे 64-year-old इंटर्न इंटरैक्टिंग विद द यंगर टीम मेंबर्स, वो काफी प्रेज जो है सबका जो है एक वो हो रहा है कि अगर चाहे तो हम क्या कुछ मुमकिन नहीं कर सकते हैं। And this saying goes for both the side of the generation, for the founder of this startup also, and for this uncle ji also, who is so, so very amazing and inspiring for all those people who are like in that 60s wale leg mein, jinko lagta hai ki ab to bas ho, ab kya hi karenge, abhi aur kya karenge, kya kuch nahi karenge, kya kuch nahi kar sakte. That's how it should be, right? Life is to live. राइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बिल्कुल स्माइल आ गई ये वाली खबर पढ़ के, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये स्माइल शेयर कर ली जाए अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल गाने। बट इफ यू वांट टू लिसन टू योर चॉइस का गाना यू कैन डू दैट 9151896 याद है ना।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: पता है ये टेलीपैथी कभी कभी ना द अदर वे राउंड भी वर्क करती है आई टेल यू हाउ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ यहाँ पर चल रहे हैं मस्ती वॉइस आपकी चॉइस 5 बजकर हो चुके हैं 50 मिनट स्टूडियो क्लॉक में यूजुअली क्या होता है कि मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में या फिर जब भी मैं शो करने आती हूँ ठीक है और मैं किसी का गाना यहाँ पर प्ले करती हूँ एंड कोई उस वक्त जो है सुनते सुनते ट्यून इन करता है कि यार अभी मेरे दिमाग में मुझे लग रहा था कि अंतरा तुमसे ये बोलूँ कि ये वाला गाना चला दो How did you do that? And I always tell them, थोड़ा सा एक स्माइल के साथ कि you know telepathy and connection है. Now it happens the other way around as well. कि मैं अपना शो कर रही हूँ, normally शो कर रही हूँ और अभी मैंने ये गाना थोड़ी देर पहले जो चल रहा था, रोज शाम आती थी. And I was just generally thinking क्योंकि सपना आंटी ने ट्यून इन किया नहीं हुआ था. So मैं कहा कि अभी अगर सपना आंटी ट्यून इन होती तो बोलती कि अरे वाह ये गाना मेरे लिए प्ले किया. Like she says with a smile on her face. और तभी सपना जी तभी आपने मुझे यहां पर मैसेज भेज दिया एंड शी इज लाइक ये गाना मेरे लिए था ना देखो मैं आ गई आई वॉज आउट आई जस्ट केम बैक एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड हाउ जैसे आपकी स्माइल आती है जब आपका गाना प्ले होता है वैसे मेरी भी स्माइल आती है जब यू नो वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इट somehow matches and so beautiful is that rishta hai na amazing so well bhai masti voice aapki choice aapka wala din hai to fir bhai bataye ki kya sunna pasand karenge aap apni choice ke gaane ya fir aap koi gaana apne aap ko hi dedicate kar do yaar ya fir apne kisi dost ko dedicate karna hai ya fir kuch bhi just aapne gaane ka naam batana hai aur मुझे बता देना है एंड आई विल प्ले दैट फॉर यू दैट्स एज सिंपल एज दैट है ना कमाल हो गया ना एकदम कमाल धमाल बेमिसाल तो कहीं और पर भी हुआ है क्या हुआ है क्यों हुआ है ऑफ कोर्स आई विल टेल यू दैट बट अगले घंटे में चलो अगले घंटे में ठीक है चलो डन डन डन गुड इवनिंग

0: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।

0: डीजे तुम ही हो. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले. बड़े बड़े हिट सुनो.
1: 6 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. अंतरा यहाँ पर आपके साथ है. 5 बजे से आपके साथ बिल्कुल बनी हुई है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है वो चलता हुआ जा रहा है. एंड चलिए लेते हैं अपडेट. भाई आजकल की अगर डिजिटल दुनिया की बात की जाए वहां पर बच्चे पहले स्मार्टफोन यूज करना सीखते हैं, उसके बाद शायद बाकी सारे स्किल सेट जो है उसको सीखने की कोई भी उनको जरूरत समझनी पड़ती है. एंड इसी डिजिटल वर्ल्ड को लेकर यूके से एकदम सीधा खबर लेकर आ रही हूँ. यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर जो है उन्होंने अनाउंस किया है दैट 16 साल से 16 इयर्स से जो नीचे के बच्चे हैं, उम्र के कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जाएगा. एंड इट्स वेरी वेरी लेटेस्ट न्यूज. इस प्रपोजल के अंडर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स जो है अंडर 16 यूजर्स के लिए एक्सेसिबल हो सकते हैं. नाउ गवर्नमेंट का कहना है कि सोशल मीडिया बुलिंग, ऑनलाइन अब्यूज और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को ये बढ़ाता हुआ जा रहा है. और बच्चों को एक सेफर डिजिटल एनवायरनमेंट देना जो एक अडल्ट की जिम्मेदारी है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए. इसीलिए एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा. नॉट ओनली ही सेड दैट, ही आल्सो सेड दैट ऑस्ट्रेलिया ने ये ऑलरेडी जारी कर रखा है इस बात पे कि सोशल मीडिया बैन जो है वो बच्चों के हाथ में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सोशल मीडिया बैन बेसिकली लगाया गया है. बट दे have taken a step further as well. जितने भी live streaming and gaming platforms है वो भी 16 साल के कम बच्चों के लिए inaccessible कर दिया जाएगा. Because that is another दुनिया जहां पर जो है बच्चे स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं. और कई बार जो है ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं, ऐसे दर्दनाक जो है किस्से सामने आए हैं जिससे जान भी खतरे में आ सकती है. सो वेल, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जैसे व्हाट्सएप एंड सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप्स है फिलहाल इस बैन का हिस्सा नहीं है. सो वेल, ये धीरे धीरे अब नेचुरली इस पे डिबेट भी साथ में शुरू हो गई है. कुछ वो कह रहे हैं दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ स्टेप, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यंगस्टर्स जो है वीपीएन या दूसरे तरीकों से रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स जो है अब सोशल मीडिया और यंग यूजर्स के रिलेशनशिप को काफी सीरियसली ले रहे हैं. एंड ये डिस्कशन सिर्फ यूके तक लिमिटेड नहीं है, दूसरे कंट्रीज इनफैक्ट सिंगापुर में भी इसके बारे में काफी बातचीत चलती है. तो सवाल यह है अगर आपके बचपन में जो है इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक होते तो क्या आप भी उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाते या प्लेग्राउंड पर ही खेलते रहते? वेल, आप इस बात पे सोचिए और सोच के बताइए कि आपको क्या लगता है. 9518963 पर. या मस्ती आपा अच्छा है बट आई थिंक उसका भी एक बॉर्डर लाइन है. नहीं, गुड इवनिंग.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 623-5840. Terms and conditions apply.
7: गाना बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले.
8: यू नो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अक्सर जानी जाती हूँ अलग अलग चीज़ जो है अपने घर पे रखने के लिए. कभी वो मेरे घर पे अगर कभी डिनर या लंच करने आए, उसके बाद मैंने उनको रेगुलर कुछ जो है माउथ फ्रेशनर टाइप का नहीं दिया, एंड कुछ और दे दिया, एंड दे विल गो लाइक ये कहाँ से. मैंने कहा हेलो मेरे दोस्तों, लेकिन तुमको ये पता नहीं है, तो वैसे ही आप मेरे दोस्त हो तो आपको भी पता होना चाहिए. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ अंतरा आपके साथ, एंड 6:00 हो चुके हैं 18 मिनट. लास्ट आपने जामुन कब खाया था ये बताइए. याद नहीं आ रहा. कितना सही सा एक जो है ना ये जामुन, इतने सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ये आता है. ठीक है, नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़े तो जामुन जो है उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके सेल को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि कैंसर एंड हार्ट डिजीज. नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था. मैंने थोड़ी पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि वाओ. एंड नॉट ओनली दैट, एंटी एजिंग के लिए एंड यू नो आपके इम्यूनिटी के लिए और लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड वाइटालिटी के लिए जामुन काफी काफी जाना जाता है. सो ggmartonline.com पर अगर आप जाएंगे एंड लुक फॉर जामुन ट्राइंगल्स, ओके, जस्ट टाइप देयर जामुन triangles. These are delightful sweet treat and jamun ka jo hai isme flavor hai, it's crispy and the golden exterior and ekdam soft se melt in your mouth center. It is matlab itna कमाल की ये चीज है ना. और एक बार आप उसको रखेंगे ना एंड आप किसी को खिलाएंगे, आपसे लोग बिल्कुल वैसे ही पूछेंगे कि ये कहाँ से ला. ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, बड़ी कमाल की चीज है. तो आप भी उनको बता सकते हैं कि ठीक है भाई, बता देते हैं. ggmartonline.com पर जाकर आप जामुन ट्राइंगल्स बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं. इट्स परफेक्ट परफेक्ट इंडल्जेंस के लिए या फिर एक फेस्टिव ट्रीट के तौर पर. यू कैन शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एयरटाइट कंटेनर में जो है इसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल रख सकते हैं, सो दैट यू कैन एंजॉय दैट ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ जामुन हर जामुन ट्राइंगल के बाइट के साथ. मेरे तो मुंह में सोच सोच के ही पानी आ गया, क्योंकि हाँ जब आपने कोई चीज ट्राई की रखी होती है एंड यू नो वो टेस्टी होती है तो सोचकर ही मेरा तो हो ही जाता है ना. ggmartonline.com भूलना नहीं.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवा।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
4: क्या जी?
5: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
4: वाजी क्या बात जी।
5: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: अब किंग लेकर वापस आ रहे हैं तो प्रिंस कुछ तो करेंगे ना साथ साथ में। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ 6:30 बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। भाई किंग खान की जो मूवी है किंग, उसके बारे में तो काफी चर्चा चल ही रही है एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ एंटीसिपेटिंग कि भाई बड़े टाइम के बाद अगेन कहते ना धीरे धीरे हौले हौले और थोड़ा सा वक्त देते हुए आगे बढ़ते जाओ तो लोगों को आपकी वैल्यू जो है थोड़ी और ज्यादा होती है। नहीं बट वेल एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर किंग। बट सवाल साथ साथ में ये भी उठ रहा था कि कहां गए ये तो कभी खुशी कभी गम का डायल�ग हो गया। कहां गए, अरे कहां गए, डू यू रिमेम्बर दैट सीन वो जॉनी सर और ऋतिक रोशन के बीच में और उनकी फैमिली के बीच में ऐसा जो है वो कहां गए चल रहा। बट एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, आर्यन खान कहां गए, उन्होंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एंड उन्होंने लॉन्च किया लक्ष्य को एंड लक्ष्य ने बीच में एक मूवी भी की उसके बाद बट उसमें उतना नहीं चले जितना बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका नाम हुआ। एंड नाउ फाइनली भाई सीजन वन के बाद जो है आर्यन खान जो अब कह रहे हैं कि 2027 है वो वक्त और वो साल जबकि बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीजन टू जो है वो रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो राइटिंग प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी अंडर वे है विद द टीम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग फ्रेश एंड ओरिजिनल नैरेटिव जो कि हर कोई कहता है बट देन रादर देन रिपीटिंग व्हाट वर्क्ड द फर्स्ट टाइम बिलाल सिद्दीकी वन ऑफ द की क्रिएटिव माइंड सीजन वन पे जो है बिहाइंड उसमें कहा जा रहा है कि एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं स्क्रिप्ट्स पे। सो इफ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ठीक है, रिपोर्ट्स की मान ही मानते हुए चलते जा रहे हैं। हमारी कौन सुन रहा है क्या ही बताए नहीं सुन रहा है जैसे बीच में धुरंधर आई वैसे ही आई एम श्योर दैट बीच में ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज भी आती रहेंगी जिसके बारे में हम कई टाइम तक कई अरसे तक बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए तो किंग खान की बात हुई है तो पठान मूवी का ये गाना हो जाए ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड इवनिंग।

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आपको पता नहीं, यहाँ पर मैं कुछ भी कभी भी गाने सुनती हूँ और अक्सर ये गाने मेरे जुबान पे चढ़ जाते हैं। जैसे वो मस्कारा वाला जो गाना है वो उस जुबान पे चढ़ रखा है, क्या ही बताओ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतराब के साथ और यहाँ पर फटाफट से 6 बजकर हो चुके 40 मिनट। ले लेते हैं ट्रैफिक का अपडेट। व्हीकल ब्रेक डाउन आपको मिलेगा ऑन ECP टूवर्ड्स चांगी आफ्टर मरीन परेड, अवॉइड करें लेन नंबर 4। व्हीकल ब्रेक डाउन की खबर ऑन BKE टूवर्ड्स PIE आफ्टर KJE और व्हीकल ब्रेक डाउन की खबर ऑन ECP टूवर्ड्स चांगी After Panchong Kadong. So well, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अमित की रिक्वेस्ट। भाई बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है कि इस मूवी का जो फीमेल वर्जन वाला गाना है वो चलाना है। अब कोई इतना ऐसा करके बोले तो फिर एंड ये गाना हम सभी को बहुत पसंद है। तो अमित, आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी इज गोइंग टू एंजॉय एज मच एज यू आर गोइंग टू। सो हियर यू गो, दिस इज मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस। आप भी अपने पसंदीदा गाने यहाँ पर बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं 9518963 पर।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड.
2: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: That's right. अगर आप से just for example अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि which Singapore MRT line is represented by the color purple on the network map? बताओ बताओ purple color की कौन सी MRT की line है और वो किसको रिप्रेजेंट करती है. आई नो पता है ना सब के प्लीज ये मतलब ये कैसा ही सवाल कर लिया तुमने. हमारा तो रोज आना जाना ही है वहां से एंड लॉट ऑफ पीपल राइट. नहीं तो वीकेंड में तो जाते ही जाते होंगे. नहीं नहीं हाँ जी हाँ जी. तो अगर आपने इस सवाल का जवाब दे ही दिया है तो बस ऐसे ही कुछ सवाल लोग के जवाब हम आपसे मांग रहे हैं कि भाई ये वो मौका है व्हेन यू कैन फ्लेक्स दैट हाउ मच डू यू नो अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आर अराउंड यू व्हिच इज गोइंग अराउंड अक्रॉस द ग्लोब and everything else under the sun as well. सवाल कुछ भी हो सकता है लेकिन जवाब अगर आप confident है कि बिल्कुल आप दे सकते हो तो then the Lion City Challenge is made just for you. It's one of a kind game show. इससे पहले कभी भी आपने इस तरह का कुछ देखा नहीं होगा सुना नहीं होगा. और पक्की बात है कि भाई जब आप जीतोगे not only you know there is cash prizes there is a lot of other prizes as well and then I think जो मामला है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक्स्ट अस LION. आई नो देखो मेरे पास जवाब ही आने शुरू हो गए यहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट लाइन नॉर्थ ईस्ट लाइन. हाँ जी इसीलिए कह रही हूँ कि जैसे ही आप ऐसी चीजों का जवाब देंगे तो फिर मतलब आप खेल सकते हो लायन सिटी चैलेंज. ओके सो यू हैव टू टेक्स्ट अस LION लायन एंड हमें भेज दें 9151-8963 पर और उसके बाद हमारी टीम जो है आपको बताएगी नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेप. लाइक पहले क्वालिफाइंग स्टेप के लिए तो आपको ये भेजना ही पड़ेगा एंड देन हु नोज वंस यू विन दिस लायन सिटी चैलेंज फिर जगह जगह गली गली आपके चर्चे होंगे कि हमने देखा था वो एपिसोड देखा था और हमने ये भी देखा था कि आपने कितना क्या कमाल का खेला था है ना. गलती ना कमाल की बात तो भेज दो जल्दी से LION लाइन लिखकर 9151-8963 पर. गुड इवनिंग.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: नीचे तुम ही हो. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले. बड़े बड़े हिट सुनो.
1: जब जब इस तरह का कोई गाना बजता है जिसमें सोना सोना जो है एकदम वर्ड आ जाता है और मुझे याद आ जाती है मेरे सोना सिंह जी की, क्योंकि मतलब उनकी रिक्वेस्ट ही इतनी हमेशा से यूनिक रही है और वो हमेशा कहते हैं कि अंतरा कोई भी गाना चला दे जिसमें सोना यानी कि मेरा सोना सोना नाम जो है वो सुनाई दिया जाए. बताओ कितनी क्यूट सी बात है ना ये, है ना. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतरा आपके साथ. यहां पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. 7:00 हो चुके हैं 6 मिनट. ये छोटी छोटी बातें तो होती है जो जिंदगी में हमें ऐसे यू हंसते खेलते हुए जो है आगे बढ़ने का वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो प्रेरणा दे दिए, प्रेरणा. यस. मुझे लगा कि आज की डेट में तो ये जो है वर्ड कभी भी आप देख लो लाइफ में जब टाइमली कोई चीज याद आनी होगी ना तो वो नहीं होगी और एकदम ऐसा वियर्ड समय पे फिर अचानक से याद आएगा, ओ उस समय में ये सोच रही थी और ये कहना था बट रह ही गया. बट समय समय की बात है एंड समय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक किरदार प्ले करता है हमारी जिंदगी में. आपको नहीं लगता है बॉबी देओल की जिंदगी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है. भाई बॉबी देओल का एक अपना टाइम था, ठीक है. हम जब 90s का शो करते हैं तो उनके टाइम के बारे में काफी हम बात अक्सर ही करते रहते हैं. उसके बाद एक बीच में काफी बड़ा ब्रेक आया एंड नाउ ही इज काइंड ऑफ बैक एंड ही इज डूइंग प्रोजेक्ट्स. बट डिड यू नो दैट हाउ डिड ही मेक हिज कम बैक? वॉट वॉज दैट वन मोमेंट विच चेंज्ड समथिंग इनसाइड हिम एंड यू नो उनको लगा कि नहीं इसके बारे में तो कुछ करना चाहिए. एंड इट्स ऑलवेज दैट वन मोमेंट. कभी भी आप देख लो जो आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हो ना वो एक मोमेंट पे बेस्ड होता है जहां पे आपको लगा हो कि नहीं ब्रो कुछ तो करना पड़ेगा इसके बारे में. सो ही सेड इन अ रीसेंट, मैं कहीं पे पढ़ रही थी इनके बारे में, एंड कि द मोमेंट दैट चेंज मी वॉज नॉट द मूवी एनिमल. It wasn't the success of the movie Animal. It was my son asking my wife a simple question, ki why is papa always home and you go to work every day? That one sentence rearranged me completely. Then just that one moment jo aapko ekdam aisa hila ke rakh deta hai ki lagta hai ki okay yeah ab वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा. एंड ही इज जस्ट ऑन अ रोल. आई मीन बैक टू बैक ही इज डूइंग अ लॉट नाउ. आई थिंक नेक्स्ट अल्फा में ही इज गोइंग टू प्ले दिस आलिया भट्ट के पिताजी का रोल. सही टाइम पे सही वाले रोल्स करो ना तो लोग भी जो है उनका एक्सेप्टेंस लेवल भी उस हिसाब से बढ़ जाता है ना. यू नो व्हाट आई मीन राइट. बट वेल फिलहाल यहाँ पर श्रेया की रिक्वेस्ट को लेकर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. अभिजीत दा की आवाज एंड ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम द मूवी यस बॉस कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड इवनिंग.

news or not, but it's everywhere. And every single time that particular video jo hai wo mere samne aa raha hai, it is just giving me goosebumps. And I just can, it's so difficult for me as a person. Mera shayad us bandi se koi bhi rishta nahi hai, but then I it is just too much for me to handle that is tarah ki cheeze bhi ho rahi hai. Well, why am I going to talk about this? Because I want to tell each one of you who is tuned in at this point of time ki hum log bahar jate hain, ghumne firne jate hain, we do these adventure trips and everything, we all have these bucket list ki hum yahan jayenge, hum ye karenge, hum wo karenge. Please make sure that jo bhi jis tarah ka bhi adventure aap karne ja rahe ho, to वो किसी लाइसेंस्ड, जो ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है ना आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर बंजी जंपिंग, प्लीज मेक श्योर दैट व्हिच एवर एजेंसी यू आर गोइंग टू या फिर जो जिस भी ट्रिप एजेंसी के साथ आप एसोसिएटेड हो, वो जहां भी लेके जा रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट इट एंड वो लोग लाइसेंस्ड है नहीं है, इसके बारे में आपको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट मेक्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस. 21 साल की ये लड़की ब्राजील की, ये जो है इट्स वेरी लेटेस्ट, ओके, एंड इट्स अ फुल वीडियो वेर देर आर थ्री मेन हु आर काइंड ऑफ कैरिंग हर, ऊपर तीनों मिलकर उसको ऊपर हवा में उठाते हैं. शी इज गोइंग फॉर बंजी जंपिंग, ओके, यू नो बंजी जंपिंग, ऊपर से आपको टाई करते हैं और उसके बाद एक फ्री फॉल होता है, इट गिव्स यू दैट एड्रेनलिन रश. मैंने उस टाइप की एक चीज कर रखी है, सो आई नो. सो in the video clearly you can see that they are picking her up and they just threw her because it's a bungee jumping and they have to do so. The only thing was they forgot to attach the rope, they forgot to attach the main thing of bungee jumping, the rope. Can of course she's no more, but that is why it is so very important. That is why I really wanted to talk about this. That make sure that, and बाद में जब इसकी investigation धीरे धीरे जो है, वो तीनों जो लोग हैं जो उस वीडियो में दिखाए गए हैं, they are arrested already. Investigation से यही पता चला है कि जिनका ये bungee jumping वाला ये पूरा इन्होंने कर रखा था, they were not licensed people. They had no idea. The people are, now that the video is circulating, we can clearly see that the rope was down. And she had nothing attached to her. It's just they just put her up and threw. It's just, yeah. Just be very, very, very, very careful about these things. Because there are a lot of things that are happening around us. So one has to be very, very cautious. Good evening.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: सीधा चलते हैं ट्रैफिक अपडेट की ओर और उसके बाद सपना जी आपका रिक्वेस्ट, मतलब आपने कहा है कि मेरे लिए कुछ तो प्ले कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है, बट आई एम श्योर दैट यू विल लाइक व्हाट आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू। 7:34 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। इस वक्त जो है आपको मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन PIE टुवर्ड्स एडवांस आफ्टर टोपायो, फिर व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन CTE टुवर्ड्स AYE एट PIE टुवर्ड्स एग्जिट, एक्सीडेंट की खबर है ऑन वुडलैंड्स एवेन्यू 12 टुवर्ड्स सलाथर एक्सप्रेस वे आफ्टर वुडलैंड्स एवेन्यू 1, सो अवॉइड करें लेन नंबर 3। ये 10 घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। गाने का अपडेट ऑफकोर्स इट्स द रेट्रो टाइम एंड इट्स अ ब्यूटिफुल नंबर, वी ऑल लव दिस नंबर, मतलब हर कोई ऐसा हार्डली, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीवन आई नो who doesn't love this song. Of course, it's Kishore Da. It has to be Kishore Da. Radio Masti 24/7 Live Par. Here we go.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Singapore, prepare for impact.
3: 3, 2, 1.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: मैं आजकल इंटरनेट क्या सोशल मीडिया के होने पे एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ आउट देयर एंड सेइंग एवरीथिंग आउट लाउड ओवर देयर। कुछ हो जाता है तो वहां पर एक वीडियो जरूर आ जाता है एंड सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। और कुछ ऐसा हुआ है कि एक तो ये जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज हुई है दैट 370 की बिरयानी एंड देन उस कॉमेडियन के शो के चक्कर में उसी कॉमेडियन के शो पे कोई एक लड़की आई हुई थी तो लड़कों ने बोला कि इस बंदे के लिए इतना ज्यादा किया जा रहा है कि इसकी नौकरी भी चली गई है। तो व्हाट अबाउट दिस गर्ल हु सेड दिस दैट गर्ल आल्सो सेड समथिंग व्हिच वाज नॉट राइट वो इस टाइम पे, बट इट वाज लाइक कई 2-3 साल पहले की बात है जो वो शो में गई होगी और उसने ऐसा कुछ कहा होगा। कहां से खोद के वो वीडियो वायरल हो गया है ये छोड़िए, इसके अलावा भी नाउ स्टोली एंड ग्रेजुअली एवरीबॉडी इज डिगिंग अप कि कौन से कॉमेडी शो पे किसने क्या बोला हुआ है, इसने भी ये बोला है, अगर इसको सजा मिल रही है तो इसको क्यों नहीं मिल रही है उसको। सडनली इट्स लाइक अ स्कूल का क्लासरूम, ठीक है। एक बच्चे को जब पनिशमेंट कभी कभी मिलता था वो नहीं कहता था कि मतलब मैंने थोड़ी ना किया है, पूरा क्लास शोर मचा रही थी तो सिर्फ मैम ने मुझे ही क्यों पनिश किया, तो फिर पूरी क्लास को खड़ा कर दिया जाता था। यहाँ पे तो सबको खड़ा नहीं कर सकते हैं तो जिन जिनके जो जो हाथ लग रहे हैं वो खड़े होते हुए जा रहे हैं। सो बस वो तो एक बात, ये जो बंदी है इसने एक वीडियो डाला, इट वाज क्यूट इनफ फॉर ऑल द मैनेजर्स एंड बॉसेस आउट देयर। तो ये कह रही है कि भाई मैंने एक रात पहले अपनी सिक लीव डाली कि भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है तो मैं नेक्स्ट डे नहीं आऊंगी। तो कहती है कि उसने कहा कि मैं ऑफिस नहीं गई तो मेरे मैनेजर ने मुझे लिख के भेजा, एक दिन पहले बता दिया करो कि तुम सिक लीव पे जाने वाली हो। तो कह रही मुझे अगर पता होता कि मैं बीमार होने वाली हूं तो फिर तो बात ही क्या थी, मैं अगर इतनी सारी चीजें प्रिडिक्ट कर पाती तो मैं और भी कितनी जिंदगी में चीजें प्रिडिक्ट करके लाइफ में कहां से कहां पहुंच जाती। आपके अंडर काम थोड़ी ना कर रही होती अभी तक, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक रात पहले कौन से भविष्यवाणी हो जाएगी कि मुझे मैं बीमार पड़ने वाली हूं और इसीलिए मुझे अभी अपने मैनेजर को टेक्स्ट कर देना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल हैव कमेंटेड ओवर देयर, वाह वाह, यू हैव टू कॉल आउट दिस बिहेवियर एंड एवरीथिंग। आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे केस में तो कई बार होता है ना, ये बड़ा ही रिलेटेबल सा सिचुएशन है कि पहले क्यों नहीं बताया कि बीमार पड़ने वाले हो, पहले कैसे बताते हैं कि बीमार पड़ने वाले। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर काफी कुछ है इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। गुड इवनिंग।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: और यूं ही देखते वक्त कहा पता नहीं चला गया भाई 15 जून भी खत्म होने को आया है बस अभी 8 ही बजने वाले हैं यहाँ पर बस कुछ ही देर में बट वेल दैट इज हाउ टाइम इज फ्लाइंग भाई रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस आप सुन रहे थे और थे इसीलिए आई होप यू एंजॉयड ऑल द गानास एंड एवरीथिंग कल वापस मुलाकात होगी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ट्यूजडे मॉर्निंग क्या होता है ट्यूजडे मॉर्निंग अंतरा वापस से सुबह सुबह जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाती है 7 से 10 होगा आपका और मेरा जो है डेट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अगर अभी तक आपने लायन सिटी चैलेंज के लिए अपना इंटरेस्ट नहीं भेजा है एंड यू हैव बीन थिंकिंग कि हाँ भेजना था देन दिस इज दैट मोमेंट क्योंकि मैं अभी वापस से आपको याद दिला रही हूँ इफ यू वॉन्ट पार्टिसिपेट टू द लायन सिटी चैलेंज इफ यू थिंक दैट यू कैन टेक अप दैट चैलेंज एंड यू कैन शो टू एवरी वन की भाई ऐसे ही नहीं बोलते थे कि हमें काफी कुछ पता होता है यहाँ पर हम जैसे सवाल पूछते हैं आप फट से जवाब दे देते हो वहां पर भी कुछ ऐसा होगा बट इट विल बी यू नो लिटिल नहीं काफी यूनिक सा एक डिफरेंट सेटअप में बट डेफिनेटली इट इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू रिमेंबर फॉर अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग टाइम सो वेल LION लायन लिखकर भेज देना है 9151896 पर तो ये हो गई वो वाली बात जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी मेरे दोस्त अब अच्छा तो हम चलते हैं कल सुबह मिलेंगे है ना बाय बाय टेक केयर यू हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग अहेड गुड नाइट

वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओह माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you. Welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. गुड मॉर्निंग सपना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी जिंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम है जी, वेलकम आपका बहुत बहुत, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे। आई एम श्योर मौसम और भी बेहतर हो जाएगा, पिछले हफ्ते आप जानते हैं 20 point something डिग्रीज पर पहुंच गया था यहाँ का मौसम सिंगापुर में, तो बड़ी हैरानी हुई, इसे फील नहीं हुआ मेरे को, फील फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने कुछ ऐसा कहा तो मुझे लगा वाह भाई, मतलब वाकई बदल रहा है। लेकिन आज की शुरुआत करेंगे हम एक बढ़िया के बढ़िया से कोट के साथ में, जो हमेशा करते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, मोह मोह के धागे, सुनेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना, एंड यू विल फील सो सो सो अमेजिंग, आई प्रॉमिस यू दैट। रेडियो मस्ती 24/7, बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास, और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी फॉर द न्यूज एंड द अपडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज रेणुका विद यू, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क, एंड यस दिस इज द मॉर्निंग शो।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो, आदाब, नमस्कार, गेम जे, सारू जे, अक्का सिंगापुर मारू जे। मैं बोले तो समर आ गया है लेकर यादों का कारवा। कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही मजे में होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। भाई आज हम बॉलीवुड के 2003 और 2004 की बेहतरीन फिल्में और उनके गाने और उनके किस्से लेकर आए हैं। शुरू करें आज का कारवां। तो क्या भाई लोग, बोले तो कसक, अपुन को आज रैपचिक गाना सुनाने का मन कर रहा है। अरे आप चौंके मत, मैं वही हूँ आपका पहले वाला समर। मैं तो बस यूं ही मुंबईया वाली बोली बोलने की कोशिश कर रहा था, भाईगिरी वाली लैंग्वेज बोलकर देख रहा था। दरअसल क्या है ना कि आज जिस मूवी के गाने के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उस फिल्म ने और उसके गानों ने ऐसा धमाल मचाया था साहब, ऐसा धमाल मचाया था कि पूछे ही मत। पूछ लीजिए, नहीं पूछेंगे तो भी मैं बताऊंगा। ये फिल्म साल 2013 की सबसे सुपरहिट फिल्म बन गई थी। छोटे बच्चे क्या, बड़े बुजुर्ग क्या, हर किसी को इस फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि कईयों ने तो इसे एक से तो ज्यादा बार देखा ही देखा, 10-10 बार भी देखा। और अब भी कभी ये टेलीविजन पर आ जाए ना तो इसे कोई देखना मिस ही नहीं करता। कौन सी है फिल्म, बताइए बताइए। एनी गैसेस? जिन्होंने गैस कर लिया और सही गैस किया उनके लिए तालियां, और जो गैस नहीं कर पाए उनको मैं बता देता हूँ। सुपरस्टार संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ मैं। याद आया आपको जादू की जप्पी वाली फिल्म? और वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं, पर भी बता देता हूँ कि फिल्म में मुरली प्रसाद शर्मा उर्फ मुन्ना भाई, संजय दत्त के अलावा डॉक्टर सुमन उर्फ चिंकी उर्फ ग्रेसी सिंह, डॉक्टर अस्थाना उर्फ बोमन ईरानी और सर्किट उर्फ अर्शद वारसी तो थे ही,

वहीं बाबूजी सुनील दत्त और माँ रोहिणी हथंगड़ी ने भी गजब का किरदार निभाया है। वास्तव में मैं तो कहता हूँ कि अगर अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो समझ लीजिएगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर रखा है। फुल मसाला, फुल कॉमेडी, फुल टू एंटरटेनमेंट, फुल टू मस्ती है, पूरा पैसा वसूल है। और गाने, ओए ओए, गाने तो पूछे मत। अब्बास टायर वाला और राहत इंदौरी के लिरिक्स को संगीत दिया है हम सभी के अजीज अन्नू मलिक साहब ने। अब बताइए गाने बेहतरीन होंगे या नहीं। वेल, फिल्म में गाने कुल 6 हैं, लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको सिर्फ 1 या 2। कौन सा सुनाऊं? आप सुनते रहिए यादों का कारवां। भाई 2003-2004 से जुड़ी तो आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी, तो शेयर कीजिए ना फेसबुक पेज पर आकर। इंतजार कर रहा हूँ मैं।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा केजी मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
5: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां के साथ. आज हमारा कारवां गुजर रहा है 2003-2004 के सालों से. तो ये बताइए, शुरुआत कैसी रही? वो दोहा सुना है आपने सिंगापुर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब. यहाँ बहुत ही फेमस और कॉमन दोहा है, हिंदी जिसने भी पढ़ी होगी उसको याद होगा. और जो ये कहता है वो एकदम सही है. कल किसने देगा भाई, मेरा मतलब कल हम इस दुनिया में हैं या नहीं कुछ कह नहीं सकते. खैर, ये बातें करने के पीछे ये मत समझिएगा कि समर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है या कोई नेगेटिविटी फैला रहा है. भैया यहाँ तो मस्ती होती है, मस्ती. दरअसल मैं तो आपको उस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका टाइटल कुछ इन्हीं की फिल्म कल हो न हो की. यंग डायरेक्टर निखिल अडवाणी का बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू था और बैनर धर्मा प्रोडक्शन का था. यश और करण जौहर साहब प्रोड्यूसर थे इसके और शाहरुख के साथ सैफ अली खान और प्रेजेंटा थे. अब इतना सब कुछ है तो और क्या चाहिए. एक फिल्म के लिए सभी बढ़िया इंग्रेडिएंट्स तो हैं. तो भाई हुआ भी यही, फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला. इतना जबरदस्त रिस्पांस कि ये 2003 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही. और वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस फिल्म ने अवार्ड्स पर अवार्ड्स अपने नाम किए. वेल, करण जौहर ने अभी हाल ही में इस फिल्म को लेकर शॉकिंग खुलासा भी किया था. सुना आपने? नहीं पता आपको? मैं बता रहा हूँ, तो मुझसे सुन लीजिए. करण ने कहा था कि पहले वो इसमें करीना कपूर को लेना चाह रहे थे, पर करीना ने इतनी मोटी फीस मांग ली कि एट लास्ट उन्हें कम बजट वाली प्रीटी जिंटा को कास्ट करना पड़ा. खैर, किस्मत किस्मत की बात है साहब. बाकी जहां तक सॉन्ग्स की बात है, सभी गाने एक से बढ़कर एक थे. और हूं ही क्यों ना भाई, जावेद अख्तर साहब ने बोल लिखे हो जिन गानों की और शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी ने जिन गानों को अपने संगीत में पिरोया हो, तो भैया वो तो होनी है हिट. माशाल्लाह सुपर हिट थे. कौन कौन से गाने सुनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा. इस फिल्म में गाना था प्रेटी वुमन, तो जो ओरिजिनल हॉलीवुड का गाना है ना प्रेटी वुमन, उसको इस फिल्म में बाकायदा फीस देकर लिया गया था, खरीदा गया था. ये ऐसा शायद पहली बार हुआ था. इससे पहले अदरवाइज हम चुपचाप कॉपी कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं थे. अभी क्या कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज ना, तो सबको पता लग जाता है कहां पर क्या हो रहा है. और तुरंत एक चिट्ठी आ जाती है बड़ी सी कॉपीराइट वायलेशन की, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. तो इससे बढ़िया है कॉपी करने की परमिशन ही ले लो. इस फिल्म में शंकर एहसान लॉय ने बड़ा सेफ खेला और उन्होंने परमिशन ली. वेल, अब तो ऐसा करने लगे हैं बॉलीवुड के लोग, परमिशन ले लेते हैं. और हॉलीवुड वाले भी हमारे गानों को यूज करते हैं तो परमिशन लेते हैं भाई. और मैं भी आपकी परमिशन से ये गाने आपको सुनवा रहा हूँ कल हो ना हो से. कीप एंजॉयिंग यादों का कारवां समर के साथ.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव है, ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो, और ये है यादों का कारवां जहां से मैं आपसे मुखातिब हूँ। अब अगली फिल्म की तरफ चलते हैं। भाई देखिए, हम तो क्या अपनी गाड़ी को रिवर्स में चलाते हैं, फ्लैशबैक में ले जाते हैं आपको, ताकि आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों की और उन गानों की याद एक बार फिर से ताजा हो जाए जिन पर कभी आप झूमा करते थे। बहरहाल चलिए, अब गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है तो इसे और पीछे करते हैं और आपको लिए चलते हैं, मतलब 2003 में ही लेकर चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, और ज्यादा पीछे नहीं चलेंगे। ये बताइए, कभी आपने एलियन को देखा है? वैसे मुझे मालूम है आपका आंसर ना ही होगा, बस मैं जरूर एलियन जैसा देखता हूँ। मुझे देखा ही कितने लोगों ने, लेकिन फिल्मों में तो आपने एलियन कई बार देखे होंगे, याद है आपको? वैसे क्या आप याद कर सकते हैं कि एलियंस और उनकी दुनिया को किसी बॉलीवुड फिल्म में सबसे खूबसूरती से कब दिखाया गया था? बताइए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, फिल्म थी कोई मिल गया, वही जादू वाली फिल्म। क्या कमाल की फिल्म थी, मतलब बच्चों की सी फिल्म है, लेकिन आज भी देखें तो बच्चा हो जाता दिल, दिल तो बच्चा है जी। पिताजी डायरेक्टर और बेटा एक्टर, राकेश रोशन की इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा के अलावा रेखा और खुद राकेश जी का भी किरदार था। वैसे रेखा को राकेश रोशन अपनी फिल्मों में लेते रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो उनकी लकी चाम है, चाहे छोटा सा रोल दें, चाहे दीवार पर उनकी फोटो टंगी रहे, लेकिन वो होती है फिल्म में। फिल्म का प्लॉट सुनकर ऐसा नहीं लगता कि फिल्म बहुत ही बढ़िया होगी, लेकिन फिल्म देखने लगते हैं तो बस देखते रहते हैं, देखते रह जाते हैं। अच्छा, ये फिल्म खाली एक ही फिल्म नहीं रही बल्कि इसके दो सीक्वल अब तक तो बन चुके हैं, क्रिश और क्रिश पार्ट 3। तो एक तो क्रिश तो यहीं शूट हुई है सिंगापुर में, आपको मालूम ही है। तो ये उसकी पहली वाली फिल्म है कोई मिल गया। ये फिल्म कमाई करने में और अवार्ड्स जीतने में भी पीछे नहीं रही। और जहां तक गानों की बात है तो आपको बता देते हैं कि फिल्म में म्यूजिक राजेश रोशन जी का है, छोटे भाई हैं राकेश रोशन जी के, और ऋतिक के चाचा हैं राजेश रोशन, और पार्टनर हुआ करते हैं वो फिल्म क्राफ्ट कंपनी में। तो वो जब अपनी कला जानते हैं तो क्यों पैसा किसी और को दें, वो म्यूजिक दे दिया करते हैं अपनी फिल्मों में। और जब जब वो म्यूजिक देते हैं तो फिल्म में यूं तो एक जादू था, लेकिन उनका म्यूजिक भी जादू क्रिएट करता है और वो जादू अब तक बरकरार है। तो फिर एक काम करते हैं, उनकी दोनों को सुन लेते हैं। अब लौट कर आइएगा आप, यादों का कारवां पर समर है आपके साथ सिंगापुर, सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए इन गानों को। इनसे जुड़ी कोई भी बातें, कोई भी यादें अगर आपको आ रही हैं तो हमसे जरूर शेयर कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर।

0: You are tuned into Radio Mighty 24/7 Live, keeping you entertained on the go. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: ओ हेलो हेलो हेलो भाई साहब, आपसे कह रहा हूँ। हाँ, सिंगापुर क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? मैंने कहा था ना लौट कर आता हूँ, कहीं खो मत जाइएगा। अब मुझे पता है कि ये गाने ऐसे ही हैं, हम इनमें डूब से जाते हैं, इनमें खो जाते हैं। खैर अब वापस आप अटेंटिव मोड पर आ जाइए, मेरी बातें सुन लीजिए, सफर को आगे बढ़ाना है। तो सिंगापुर अब हम बात करते हैं हमारी फास्ट फॉरवर्ड होती जा रही लाइफस्टाइल के बारे में। आपको भी क्या ऐसा महसूस होता है कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में, भागम भाई लाइफ में, हम कई बातों को इग्नोर कर रहे हैं, दरकिनार कर देते हैं? अब कोई ऐसा भी होता है जो उन्हें सब कुछ जानते बूझते भी इग्नोर करता है, और कोई न चाहते हुए भी जरूरी बातों को टाइम दे नहीं पाता है। वैसे समझ रहे ना मेरा इशारा किस तरफ है? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की, वो जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। जिस किसी चीज पर भी उंगली रखी या किसी भी चीज के लिए हमने जिद की, वो हमें उनकी बदौलत मिलती रही। पर आज की हमारी लाइफ स्टाइल में कभी कभी ये पेरेंट्स अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। वेल, चलिए मैं पॉइंट पर आता हूँ। आप सोचेंगे कि आज यादों का कारवां में कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे ही टॉपिक पर बेस्ड रही ये 2003 में आई फिल्म बागबान। अब समझ में आया मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा था। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने देखी होगी अमिताभ बच्चन साहब और हेमा मालिनी जी की प्योर फैमिली ड्रामा फिल्म। फुल इमोशनल ड्रामा है ये, और मेरे ख्याल से काफी हद तक सच्चाई भी है बड़े शहरों की। और जिसने भी ये फिल्म देखी होगी तो पूरी फिल्म में कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी आंसू आए होंगे। मेरे आए थे मालूम है कब? जब वो सीन होता है ना करवा चौथ के बाद, फोन करते हैं दोनों एक दूसरे को। बच्चन साहब तो कभी भी रुला लेते हैं। तो बागवा, इसका टॉपिक, इसके किरदार, स्टोरी, ओपनिंग, एंडिंग, क्लाइमेक्स, सब कुछ परफेक्ट था। 1983 की नास्तिक फिल्म के 20 साल के बाद बिग बी और ड्रीम गर्ल की ये जोड़ी पर्दे पर साथ आई और लोगों ने खूब पसंद किया इन्हें। फिल्म के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा साहब, और उनके पास ये स्टोरी का प्लान और भी पहले का था। बता दें कि पहले वो इसे मिड 80s में बनाने वाले थे, जिसमें वो दिलीप कुमार साहब और राखी जी को कास्ट करना चाहते थे। खैर ये बात अलग है कि बाद में रवि चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को पूरा किया। और जब इस फिल्म को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये फिल्म बच्चन साहब और हिमा जी के लिए ही लिखी गई थी। और एक बात और जो शायद आपको पता नहीं है, वो ये कि

फिल्म के क्लाइमेक्स में जो बच्चन साहब की स्पीच वाला पार्ट था ना, वो एक बार में नहीं बल्कि 36 बार रीराइट हुआ था। इस बात का खुलासा खुद स्क्रिप्ट राइटर अचला नागर ने किया। वेल, जहां तक बात गानों की है, जैसी बेहतरीन फिल्म वैसे ही बेहतरीन इसके गाने भी हैं। समीर साहब के लिरिक्स को म्यूजिक दिया आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह ने। इस फिल्म एल्बम के साउंड ट्रैक के 14 लाख यूनिट्स बिक गए थे, जो साल के सबसे ज्यादा सफल साउंड ट्रैक्स में से एक था। अब आप कह रहे होंगे, यार गाना कब सुनवाओगे? चलिए कौन सा सुनवाओ, चली चली या फिर बागवा टाइटल ट्रैक या फिर होली वाला? कंप्यूटर जी, हेल्प प्लीज।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 3, 2, 1।
3: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: वेलकम बैक सिंगापुर। तो जी, जो भी इस वक्त खूबसूरत से गानों में खो गए हैं, उन्हें एक बार फिर से उठाते हुए, जगाते हुए याद दिला दें कि आप इस समय हैं समर के दरबार में, जहां हम आपके लिए पेश कर रहे हैं 2003 और 2004 के सुपर डुपर बॉलीवुड फिल्मों के सुपर डुपर सॉन्ग्स। वैसे सिंगापुर एक बात तो है, मेरा मतलब जो सादगी होती है ना, वो अक्सर वो काम कर जाती है जो शोशाबाजी भी नहीं करवाती है। दरअसल ये जो फैक्टर है ना, वो कई बार किसी से मोहब्बत करने में भी चल पड़ता है। अब हमारे राधे भैया को ले लो। अरे हाँ भाई, फिल्म तेरे नाम के राधे भैया देखा नहीं? कैसे एक आवारा सा, लड़ाकू सा, हर समय झगड़े फसाद करने वाला राधे भैया एक सीधी साधी भोली भाली निर्जला नाम की लड़की पर लट्टू हो जाता है, मेरा मतलब फिदा हो जाता है। फिर तो भाई वो मोहब्बत की आगोश में ऐसा चला जाता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वाकई क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट पर बनी थी ये फिल्म तेरे नाम। सलमान खान और भूमिका चावला की बेहतरीन अदाकारी को सतीश कौशिक के डायरेक्शन ने जबरदस्त तड़का लगा डाला था। 15 साल बीत गए फिल्म को रिलीज हुए, भले ही ये बड़े पर्दे पर नहीं है, लेकिन जब भी कभी टेलीविजन पर इसे देखते ना, तो न जाने क्यों एक नयापन सा लगता है इसमें। ये 2003 में सल्लू भाई की इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, कई सारे अवार्ड जीते और बहुत सारी कमाई की। तेरे नाम के जबरदस्त रिस्पांस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके फैंस जो हैं, वो अब भी सतीश कौशिक से फिल्म का सीक्वल लाने के लिए मांग करते हैं। पर जी वो कहते हैं ना, गोल्ड इज गोल्ड, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। खैर बात तो सही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये भी ओरिजिनल नहीं थी फिल्म, एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, लेकिन हिंदी में ऐसी बनाई कि लोग देखते रह गए। बहरहाल बात करें फिल्म के म्यूजिक की, तो इस फिल्म का साउंडट्रैक भी उस साल के सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैक्स में रहा। समीर साहब के बोलों को म्यूजिक मिला हिमेश रेशमिया का। वैसे कुल 13 गाने फिल्म में, और इन सभी गानों को आपस में शेयर किया है दो खूबसूरत सी आवाजों ने, जहां उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने। सभी गाने एक से बढ़कर एक लाजवाब है, पर वही बात, कौन सा गाना सुनवाऊं? कंप्यूटर जी सुनवा दीजिए कोई भी दो रसगुल्ले से मीठे गाने, और आप रेडियो मसी 24/7 लाइव पर बने रहिए समर के साथ।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: Singapore, prepare for impact.
8: 3, 2, 1.
9: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
10: Welcome back, Singapore. Radio Musty 24/7 Live Bar. I am Samar. Yaadon ka karwaan ke saath. आज हमारा कारवां गुजर रहा है 2003-2004 के साल से। बचपन में पेरेंट्स सभी को सही सलाह देते हैं, पढ़ाई कर लो, टीवी ज्यादा मत देखो, खेलने का वक्त तय करो, वक्त कीमती है बर्बाद मत करो, फलाना ढिनका, मतलब बहुत सारे लेक्चर मिलते हैं। और दोस्तों, जिस भी किसी ने उस बचपन के समय में अपने पेरेंट्स की बात को सीरियसली ले लिया, वो आज टॉप जगहों पर बैठे हुए हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो। और जिन्होंने पेरेंट्स की बातों को दरकिनार या नजरअंदाज किया, वो रह गए। मेरे भी पेरेंट्स कहा करते थे कि बेटा, एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाकर चलो, उसके बगैर सक्सेस पाना मुश्किल है। खैर, चलिए अभी के लिए पेरेंट्स और रियलिटी वाले लक्ष्य को रखते हैं एक तरफ और बात कर लेते हैं रियल लाइफ यानी कि बॉलीवुड के लक्ष्य की। जी हाँ, 2004 में आई ऋतिक रोशन की इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था। वैसे कमी फिल्में होती हैं जो हमारी और आपकी लाइफ में इतना गहरा असर छोड़ जाती हैं कि वो एक दिशा दे देती हैं आपको कुछ कर गुजरने के लिए। ऐसी ही फिल्मों में से एक है ये फिल्म। हिंदुस्तान सेना की 99 में करगिल फतेह मिशन की कामयाबी को एक शख्स की जिंदगी से ऐसा जोड़ा गया कि वो हर किसी को भाग गया। फिल्म देखने के बाद न जाने कितने ही यंगस्टर्स को प्रेरणा मिली, नया जोश मिला जिंदगी में एक लक्ष्य बनाने का और उसे अचीव करने का। वैसे फिल्म में ऋतिक के अलावा रिपोर्टर बनी प्रीति जिंटा, कर्नल बने बिग बी अमिताभ बच्चन साहब और लगभग सभी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। वैसे मानना होगा फरहान अख्तर को, पहले तो दिल चाहता है कि साथ करियर की धमाकेदार शुरुआत की और दूसरी फिल्म ये बनाई थी लक्ष्य। डायरेक्टर दो इस फिल्म के, स्टोरी लिखी थी उनके पिताजी ने, जावेद अख्तर साहब ने। ओपनिंग के साथ ही लक्ष्य को जबरदस्त रिस्पांस मिला था और गाने और म्यूजिक की तो पूछे ही मत आप बात। टाइटल ट्रैक तो इतना हिट है, मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने ये जाना है, कितना असरदार है। और कंधों से मिलते हैं कंधे, कमाल, रोंगटे खड़े कर देता है। और वो गाना, मैं ऐसा क्यों हूं? मतलब सभी गाने हर तरह के फ्लेवर के थे, रोमांटिक भी थे, मोटिवेशनल भी थे, हर तरह का गाना था। मैं ऐसा क्यों हूं, इस गाने को कोरियोग्राफ किया था फरहान अख्तर ने। लोगों को लगता है प्रभुदेवा ने किया होगा, लेकिन फरहान अख्तर खुद एक बहुत ही कमाल के डांसर हैं, जबरदस्त। तो साहब एक काम करते हैं कि लक्ष्य के कंप्यूटर जी, दो गाने सुनवा दीजिए और आप इन गानों के साथ अपनी यादों को हमसे ताजा करते रहिए। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं हूं समर आपके साथ। यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूं, लौटता हूं इन गानों के बाद।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं समर आपके साथ। आज हमारा यादों का कारवां गुजर रहा है 2003-2004 के सालों से और अभी हम 2004 में आ गए। इसी साल एक फिल्म आई थी वीर जारा। वैसे इंडिया पाकिस्तान की टेंशन पर, बॉर्डर पर, टेररिज्म जैसे कॉन्सेप्ट पर बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में अब तक बन चुकी हैं और अभी तक बन भी रही हैं। इनमें से कई सुपर डुपर हिट हो गई हैं तो कईयों को दर्शकों ने नापसंद कर दिया। पर दो दुश्मन देशों के बीच प्यार और मोहब्बत के कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाना हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। और सोचिए इस कॉन्सेप्ट को दोनों मुल्कों के लोगों का जबरदस्त पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले तो क्या कहेंगे आप। जी हाँ, ऐसी फिल्म थी वीर जारा, 2004 में आई थी। लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा ने सरहद पार दो प्रेमियों के बीच की इस कहानी को फिल्म की शक्ल दी और शाहरुख खान इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह के रोल में, तो वहीं हमारी डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा ने निभाया है पाकिस्तान की जारा हयात खान का किरदार। वीर और जारा की ये प्रेम कहानी इतनी जबरदस्त हिट हुई कि उस साल हुए लगभग हर अवार्ड पर इसी का कब्जा रहा। और सिंगापुर वीर जारा सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में नहीं चली बल्कि इसको यूके, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर में भी शानदार रिस्पॉन्स मिला है। और वैसे अगर कोई फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और पेरिस के सबसे बड़े द ग्रैंड रेक्स थिएटर पर दिखाई गई हो तो सोच सकते हैं कि किस भव्यता के साथ इसे इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया गया। और विदेशों के थिएटर्स पर तो शाहरुख खान और पीडी के चाहने वालों का हुजूम उमड़ने की भी खबरें थी। और जहां तक सॉन्ग्स की बात है, म्यूजिक की बात है, तो इसमें भी लाजवाब गानों ने हर किसी का दिल जीत लिया। कुल 11 गानों में से 9 गानों को आवाज मिली हिंदी सिनेमा की स्वर कोकिला लिविंग लेजेंड लता जी की। यहाँ गानों में उनका साथ निभाया उदित नारायण जी ने, रूप कुमार राठौड़ जी ने और सोनू निगम ने। और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म का म्यूजिक मदन मोहन साहब के खजाने से निकाला गया। उनके बेटे ने रीअरेंज किया वो म्यूजिक और ये धुनें वो थीं जो मदन मोहन साहब तब बना गए थे जब वो जिंदा थे। जावेद अख्तर साहब ने गानों के बोल लिखे और क्या कमाल के बोल लिखे। और एक गाना गुरदास मान की आवाज में भी है, ऐसा देश है मेरा। तो चलिए अभी मूड को रिफ्रेश कर लेते हैं वीर जारा के इन खूबसूरत गानों के साथ। आप सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ।

सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: वेलकम बैक दोस्तों, समर का शो चल रहा है यादों का कारवां रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज हम 2003 और 2004 की सुपरहिट फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। चलिए बढ़ाते हैं अपने आज के इस कारवां को आगे। और अभी हमने बैक टू बैक इंडिया पाकिस्तान और सरहद पर बनाई गई फिल्मों की बात की, लक्ष्य और वीर ज़ारा की। अब कुछ बात करते हैं रफ्तार की। आपको भी पसंद है कि रफ्तार भरी जिंदगी? वैसे जिंदगी में रफ्तार सही है, लेकिन सड़क पर रफ्तार ना बाबा ना। और दोस्तों प्लीज, समर की आपसे ये दिल से अपील है कि सड़क पर कभी भी रफ्तार मत पकड़िएगा, तो यकीन जानिए हम बहुत दुखी हो जाएंगे। दरअसल स्पीड और रफ्तार वफ्तार वाला काम ना सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ड्राइवर्स पर ही छोड़ देना चाहिए। सही कह रहा हूं ना? आपने वो मूवी देखी है धूम? जी हाँ, वही फिल्म जिसके बाद खास तौर से हमारे यंगस्टर्स को स्पोर्ट बाइक्स, उससे रफ्तार पकड़ने और दो और स्टंट्स करने का जबरदस्त शौक चढ़ गया। इंडिया में तो यही हुआ था, पर कुछ भी कहिए, इस धूम ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा दी थी। अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा, ईशा देओल और रिमी सेन इस फिल्म में थे। 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई। एक एक्शन थ्रिलर थी ये और उस साल की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक थी। फिल्म बाइकर्स गैंग और पुलिस के इर्द गिर्द घूमते कॉन्सेप्ट पर बनी थी और इसे काफी पसंद किया गया था। यही वजह रही कि इसका एक नहीं बल्कि दो सीक्वल तब तक आ चुके हैं। 2 साल बाद धूम 2 आई और उसके 7 साल बाद 2013 में धूम 3 रिलीज हुई। लेकिन वही बात, ओल्ड इज गोल्ड और ओरिजिनल इज ओरिजिनल, यही बात धूम के साथ भी फिट बैठती है। जो बात 2004 वाली पहली धूम की थी, वो बाकी की धूम में कुछ मतलब बन नहीं पाई। वेल, धूम के सॉन्ग्स ने भी जबरदस्त धूम मचाई। टाइटल ट्रैक तो बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। अभी भी जब कभी ये धूम वर्ड आता है तो सभी की जुबान से वही गाना बाहर आ जाता है, धूम धूम धूम मचाले टनाले। और दोस्तों धूम के गानों की जबरदस्त पॉपुलैरिटी का जो क्रेडिट है वो प्रीतम और सलीम की जोड़ी को ही जाता है। सुनिधि चौहान की आवाज में गाए गए धूम मचाले टाइटल ट्रैक के अलावा दिलबरा है दिलबरा, शिकदुम शिकदुम या फिर सलामे सलामे, हर गाना बेहतरीन है। और टाइटल ट्रैक टाटा यज्ञ ने भी गाया है, धूम धूम। तो चलिए अब कौन सा गाना सुनाए, बताइए बताइए। कंप्यूटर जी प्लीज हेल्प कीजिए। कंप्यूटर की हेल्प से हम इन गानों को सुनते हैं। आप सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज, आपकी जीत।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक, समर के साथ हैं आप रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। समर के साथ एक बात की तो गारंटी रहती है और वो है फुल एंटरटेनमेंट की। जी हाँ, समर यादों का कारवां में आपके लिए ऐसे गाने चुनकर लाता है जो कभी ना तो आउटडेटेड हुए हैं और न ही कभी हो सकते हैं। क्यों बताइए, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ मैं हूं ना। मतलब जब जिक्र हो चला है मैं हूं ना का, जब बात चल रही है 2003 और 2004 की बेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स की और उनके गानों की, तो शाहरुख खान साहब की मैं हूं ना फिल्म पर भी थोड़ी नजरें इनायत कर लेते हैं। जी हाँ, 2004 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा भरपूर इस फिल्म में शाहरुख के साथ जायद खान, सुनील शेट्टी, अमृता राव और सुष्मिता सेन लीड रोल्स में थे और इसे डायरेक्ट किया कोरियोग्राफर के तौर पर झंडे गाड़ चुकी फराह खान ने। फराह की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। फराह और उनकी इस फिल्म को भी इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला कि इसकी भी सीक्वल बनाने की डिमांड आने लगी, पर फराह ने हर बार साफ कर दिया कि भैया उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। वैसे फराह और मेरी सोच एक जैसी है, जो पहली होती है द ओल्ड इज गोल्ड। वेल, मैं हूं ना के गाने भी लाजवाब हैं, कोई भी उठाकर देख सकते हैं आप। टाइटल ट्रैक मैं हूं ना या तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें, या फिर तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने चाहा, और वो गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी। दोस्तों, फिल्म को चार चांद लगाने वाले कुल 9 गानों में से एक को चुनकर यहाँ पर पेश करना बड़ा मुश्किल है, तो कंप्यूटर जी 2 गाने सुनवा दीजिए प्लीज। प्लीज आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। कंप्यूटर मान गए, 2 गाने सुनिए आप मैं हूं ना के। मैं लौट कर आता हूँ, मैं यही हूँ ना। आ रहा हूँ, आप भी यही ना। हाँ, वापस आइए, सुनते रहिए यादों का कारवां सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो पर, जिसका नाम क्या है, ये मस्ती। जोश में रहिए।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

सिंगापुर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां समर के साथ। मैं आज आपको ले चला हूं 2003-2004 के सफर पर। 2003 और 2004 की बेहतरीन फिल्मों और उनके सॉन्ग्स को आज हम रिवाइव कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं और आपके साथ क्या कहूं मैं, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अब जाने का वक्त भी आ गया है। कौन कहता है कि गाने पुराने हो गए, ये गाने कभी पुराने हो ही नहीं सकते। बहरहाल बढ़ाते हैं अपनी कारवां को और एक और फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। 2004 में आई फिल्म मर्डर की बात करते हैं अब। जी हाँ, वही महेश भट्ट और मुकेश भट्ट वाली फिल्म, बोल्ड कॉन्सेप्ट वाली फिल्म मर्डर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुराग बासु ने। मियां बीवी और वो के कॉन्सेप्ट पर बनी ये थ्रिलर लव स्टोरी भी उस साल के सुपरहिट फिल्मों की फेहरिस्त में शुमार हो गई थी। और गाने तो क्या कमाल थे भैया। और इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत के लिए तो ये फिल्म लॉटरी साबित हुई। इमरान और मल्लिका दोनों के करियर की ये दूसरी फिल्म थी और इमरान को फुटपाथ के बाद और मल्लिका को ख्वाहिश के बाद इसमें काम करने का मौका मिला। और जहां तक कॉन्सेप्ट और इसकी बोल्ड सीन्स की बात है तो ऑब्वियसली इस फिल्म की वो जरूरत थी, डिमांड थी। उसे देखते हुए इसे ए सर्टिफिकेट मिला और इसके बाद 2011 में मर्डर 2 और 2013 में मर्डर 3 के सीक्वल भी रिलीज हुए। गाने भी इनके धमाकेदार रहे लेकिन इस फिल्म की बात ही कुछ और थी। सईद कादरी और राहत इंदौरी के लिरिक्स को संगीत दिया नन अदर देन हरदिल अजीज अनु मलिक साहब ने। कमाल के गाने थे भैया मर्डर के। तो मर्डर के गाने सुनवा देता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर जी एक नहीं, टाइम है अभी, दो सुना दीजिए। भीगे होंठ तेरे और कहो ना कहो, इन गानों के साथ आज के इस कारवां को मैं यहाँ थाम लूंगा और एक और बेहतरीन साल की सैर पर आपको ले जाने के वादे के साथ मैं भी आपसे विदा ले लूंगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। लेकिन जाते जाते कहूंगा क्या कि रखिएगा आप अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के होठों पर मुस्कुराहट बनकर सज जाइएगा और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आपको लोग दुआओं में याद करें। मुझे भी याद कर लीजिएगा। अभी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ यहीं पर रेडियो मजी 24/7 लाइव। सुनते रहिए, बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।

0: Thank you. Thank you so much. Thank you.
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या
0: जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है।
2: अरे क्या

0: दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे,
0: सच भाई
1: हुए हैं आज बेगाने,
2: हम ही परताने कसते हैं, हम ही परताने कसते हैं, हम ही परताने कसते हैं।

mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Dagna, dagna, dagna, dagna, dagna, dagna, datta, datta, datta, mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Sarega ma padani sanini papa mama, oh mama, oh manga desa mama, oh mama, oh mama, mama, mama. घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात अकेली है
3: जोश में रहो।
4: ये वो हिट पे पिक्चर आ रही है ना,
5: कौन से?
4: बॉडीगार्ड। उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
6: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
7: तेरी
6: है ना?

जो भी देख यही पूछ है एक सुखी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

0: 呀，疼呀。
1: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: लाइफ।
1: हर दिन एक जैसा नहीं होता, मानते हो ना आप? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा यहाँ पर पहुंच चुकी है। सुबह सुबह 7 बजकर हो चुके हैं 4 मिनट एंड यहाँ पर शुरू हो चुका है मस्ती का मंत्रा। ऑफकोर्स इट्स अ ट्यूजडे मॉर्निंग बिकॉज दिस इज द मॉर्निंग, मंगलवार का मंगल दिन होता है जब सुबह सुबह यहाँ पे अंतरा आ जाती है। एंड एवरी डे इज नॉट द सेम, इस बात से मैंने इस लिए शुरू किया बिकॉज भाई आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग जब आते हैं यहाँ पर तो हमारी तो आदत पड़ गई होगी, बहुत सारे लोगों की सुबह उठने की आदत होती है, बट देर आर डेज, ओके, देर आर डेज एंड यू वुड अग्री विथ मी ऑन दैट, व्हेन यू जस्ट डोंट वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आपको ना थोड़ा और सोने का वो जो एक अच्छा सा एक आता है ना फीलिंग, एक तो वो सुबह वाली नींद का जो नशा होता है वो अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। एंड there are days when you kind of snooze your alarm 3-4 times because आपको लगता है कि एक काम करते पांच मिनट करते करते फिर आप अचानक से आंख बंद करते हो एंड पता नहीं कहाँ से I don't know how आधे घंटे निकल जाते हैं and then you wake up and you go like oh my god, अगर अभी नहीं निकले तो फिर आज तो बहुत ही पंगे हो जाएंगे। So, आज की सुबह कुछ ऐसी ही थी जहां पर ऐसे नींद के नशे आ रहे थे एंड उसके बाद भाई सुबह जो मैं ऐसे झपकियां लेते लेते, बट नाउ वही है कि अब जो है हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आपसे बातें बातें करेंगे, हमने चाय बना ली है, जैसे ही वो पहली घूंट अंदर जाएगी अपन एकदम अंदर से फुल ऑन एक्टिवेट हो जाएंगे। बॉडी को भी पता चल जाएगा कि भाई या इट इज गुड मॉर्निंग एंड डेफिनेटली इफ आई एम मीटिंग यू दिस मॉर्निंग इट हैज टू बी द गुड द बेस्ट मॉर्निंग एवर, राइट। वेल ये तो थी मेरी खबर, आप बताओ आज पैसे उठ गए कि आप भी एकदम 3-4 स्नूज के बाद उठे हो? आप तो अच्छे हो है ना? नहीं, बहुत डिसिप्लिन के साथ हमारा चलता रहता है इधर उधर ऐसा वैसा। वेल, मैं जरा अपनी चाय की सिप विप लेकर आती हूँ, आप गाने वाने सुनकर वापस आइए एंड लेट अस बिगिन मस्ती का मंत्रा विद अंतरा। गुड मॉर्निंग।

0: Are you ready?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
4: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे हंत्रा.
2: I love people of Japan and I love certain things about them completely. 7:19 ho chuke hai studio clock mein. Good morning Radio Masti 24/7 live. Main hu Antra aapke saath yahan par chal raha hai Masti ka mantra. And you know, every now and then ek aisi kahani jo hai, ek aisa kuch video jo hai, kind of pops up and it restores my faith ki bhai चलो ऐसी भी चीजें हो रही है. सो वेल, टॉकिंग अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप विच इज गोइंग ऑन, आफ्टर जापान का रीसेंट 2-2 का जो ड्रॉ हुआ अगेंस्ट नेदरलैंड्स डैलस स्टेडियम की ये बात है, समथिंग रियली रिमार्केबल हैपन एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन जापान की टीम या फिर जापानीज लोग जब अपने फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, कोई भी मैच देखने जाते हैं, दे हैव ऑलवेज डन दिस. आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन सिंगापुर एज वेल. नाउ व्हाइल मोस्ट फैंस जो है जब जो हुआ मैच कंप्लीट हुआ एंड एवरीथिंग, दे वर बिजी सेलिब्रेटिंग, दे वर डिस्कसिंग द मैच, मोस्ट ऑफ देम लिव होम. जापानीज सपोर्टर्स जो हैं, दे क्वाइटली एंड दे डू दैट एवरी सिंगल टाइम एवरीवेयर दे गो, ओके, एंड दे आर नोन फॉर इट. दे जस्ट क्वाइटली दे स्टेड बैक एंड क्लीन्ड अप द एंटायर सेक्शन ऑफ द स्टेडियम. रैपर्स हो गए, बॉटल्स हो गए, लिटर हो गए, रो बाय रो दे जस्ट क्लीन्ड इट अप लाइक एवरीथिंग. इन फैक्ट देयर इज दिस स्मॉल पिक्चर ऑफ जिस रूम में जो है जापान की टीम जो है उनका ड्रेसिंग रूम था, व्हेन दे लेफ्ट दैट रूम वो भी फुल क्लीन करके. इट्स नॉट दैट कि जस्ट अपने अपना सामान उठाया और निकल गए. ये लोग तो प्लेयर्स हैं, इनको तो कौन क्या ही बोलेगा, बाद में क्लीनर्स तो आएंगे ही. बट देन दे टुक इट ऑन देमसेल्व्स, दे क्लीन अप द होल रूम एंड जस्ट स्पिक एंड स्पैन छोड़ के गए वैसे. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बट इट इज नॉट न्यू, लाइक आई वाज सेइंग. सो जापानीज फैंस हैव बिकम नोन अराउंड द वर्ल्ड फॉर डूइंग दिस एट मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स, चाहे वो फीफा के वर्ल्ड कप्स हो, या कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई फैनफेयर नहीं, कोई सोशल मीडिया का चैलेंज नहीं, जस्ट अ सिंपल हैबिट ऑफ लीविंग अ प्लेस एज क्लीन और क्लीनर देन दे हैड फाउंड इट. एंड आई फाइंड इट एब्सोल्यूटली अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा. कभी कभी रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा यू नो नजर आती है उन छोटी छोटी बातों में जो हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर जाते हैं. सो यस, यहाँ पर तो हम लोग वैसे जनरली वी आर वेरी वेरी गुड इन टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई होप दैट हर जगह पर इस तरह से वी टेक इट अ लिटल बिट ऑन आवर सेल्फ. सो एवरीबॉडी, if we all take that one thing, responsibility on ourselves, I think it is going to be much, much, every place we go, it is going to be a better place. Lagta nahi hai? Kudos to them. Seriously. Good morning.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:30 बाय द स्टूडियो क्लॉक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। चलिए आपको देते हैं ट्रैफिक का इस घंटे का अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स पीआईई आफ्टर पुंगोल रोड। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन एसएलई टुवर्ड्स सीटीई आफ्टर वुडलैंड्स एवेन्यू 12 अवॉइड करें लेन नंबर 4। और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन बीकेई टुवर्ड्स पीआईई आफ्टर केजेई अवॉइड करें लेन नंबर 3। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अरिजीत सिंह, जो अभी आजकल कोई गाना नहीं गा रहे हैं, बट वी आर गुड क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गाने हैं जो कि अभी भी हम एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द मूवी एयरलिफ्ट एंड अ ब्यूटिफुल वन कॉल्ड सोच ना सके ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: for the special treat.
1: आपकी नॉलेज आपकी जीत.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा.
4: जब जब हमें आंसर्स आते हैं तब तब, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द लायन सिटी चैलेंज, तब तब हमें लगता है कि यार सच में ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या. वेल गुड मॉर्निंग, नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह से जुड़ चुकी है. चल रहा है मस्ती का मंत्रा एंड यस लायन सिटी चैलेंज के लिए रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल पार्टिसिपेट अगर आपको करना है एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन आंसर ऑल दोज क्वेश्चन जो कि हम लोग यूजुअली एक दूसरे से बात करते हुए रहते हैं कि इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था, फटाफट से बताओ कौन था इंडिया का सबसे पहला प्रेसिडेंट. हम लोग कैसे जीके के उसमें हम लोग लिखा करते थे और याद किया करते थे. अभी इट इज मोर अबाउट दैट हाउ अपडेटेड यू आर, यू नो व्हाट इज गोइंग अराउंड इन सिंगापुर, यू नो व्हाट इज गोइंग अराउंड अक्रॉस द ग्लोब, यू आर काइंड ऑफ अप टू डेट एंड यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू फ्लेक्स दैट एंड यू विन ऑल्सो After flexing कि भाई मुझे तो काफी सारा कुछ पता है, then Lion City Challenge is just for you. अब इसमें first phase में participate करने के लिए आपको सिर्फ करना इतना है Lion LION, that is what you have to text us. Like a lot of other people who are texting us. उसके बाद आपके पास आएंगे एक मतलब फर्स्ट स्टेप को पार करने के लिए दो सवाल, वो सवाल का आप जवाब देंगे तो आप सेकेंड स्टेज में पहुंचेंगे एंड उसके बाद आपको टीम जो है हमारी वो गाइड करेगी कि क्या होने वाला है अगले पड़ाव पे. बट वेल उसके लिए पहला कदम जो है वो आपको ही उठाना पड़ेगा. सो इफ यू आर लिसनिंग टू दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन यस this is what it is, it comes with prizes and winnings and also you know once you win this you know there's going to be an episode and itna kuch ki bhai humne lion city challenge mein participate kiya tha and then we won, if you win that is, it is going to be a big deal, trust me on that. And it is this game show is going to be a very very different one you have not been before or seen before as well. So make sure that participate karne ke liye aap hame lion likhkar zarur bhej de 9151-8963 par. Do that now.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.